ولا

مثل

شيئا

पीपल्स पार्टी पीटीआई खां हिकु भेरो ॿीहर लाग मार्च गैर मशरूत तौर ख़तम करण जो मुतालबो करे छॾियो। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदार हुकूमत ऐं मुख़ालिफ़ धुर विच में ॻाल्हियुनि खे सुठो साउण करार ॾींदे चयो आहे त मुख़ालिफ़ धुर पंहिंजो लाग मार्च गैर मशरूत तौर ख़तम कंदी। पाड़ेसरी मुल्कनि मां दहशतगर्द ग्रुपनि खे मिलंदड़ फ़ाहमायात घणती जोगी आहे। सेनेटर श्री रमा चयो आहे त लांग मार्च जे तारीख़ वधाइण या मुल्तवी करण सां मसलो हल न थींदो। पीटीआई लांग मार्च ख़तम करे। इस्लामाबाद में कोप रोड बंदि नाहे कयो वियो। हाई कोर्ट जे हिदायतुनि ते एहतियाती तौर कंटेनर्स रखिया विया। हिफ़ाज़ती क़दमनि जो मक़सदु शहरियुनि जे जान माल बुनियादी ढांचे ऐं असास ठिकाणनि जो तहफ़ुज़ आहे। इतलात वारे वज़ारत इस्लामाबाद में रोडनि जे मुबैना बंदिश वारियूं ख़बरूं रद्द करे छॾियूं। जारी कयल बयान में चयो वियो आहे लाॻापियल पार्टी जे माज़ीअ जे परतशदुद वाक्यनि खे बि नज़र आॾो रखियो वियो आहे। इस्लामाबाद में शहरियुनि जी कानूनी चुरपुर जारी आहे। कंटेनर जे मौजूदगी खे रोडनि जे बंदिश करार ॾियणु हक़ीक़तुनि जो उबतड़ आहे। अहिड़ी नौयत जे मुख़्तरफ़ी रिपोर्टिंग अवाम में गुमराह कंदड़ ऐं नाकारी तासुर पैदा करे थी। नव मई जहिड़ी सूरत हाल या वगोड़ पैदा करण वारी कोशिश खे सख़्ती सां मुंहुं ॾिनो वेंदो। कोर कमांडर वाज़े करे छॾियो आहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी सदारत हेठि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल जो जाइज़ो वरितो वियो। हर क़िस्म जे ख़तरनि खे मुंहुं ॾियण लाइ आला सतही ऑपरेशनल तयारी बरक़रार रखण वारे अज़म जो वर्जाव, पाकिस्तान जे दिफ़ाई हक़ वारे अज़म जो तौसीक, अफ़गानिस्तान मां जनम वठंदड़ दहशतगर्दी ख़िलाफ़ टारगेट कारवायूं जारी रखण वारे अज़म जो वर्जाव, दहशतगर्दनि जे सहूलतकार कंदड़ तालिबान क़यादत नतीजनि जो ज़िमेवार करार, दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जी साराह, नेशनल एक्शन प्लान तहत अवाम जे फिलहाल ते ॿधल हुकुमरानी, दहशतगर्दी इदारनि जे गठजोड़ जो ख़ात्मो ऐं पुलिस जे सग में वाधंटर करार, ISPR मौजूदु कंहिं बि बहाने सां इंतिशार पकड़ण या नव मई जहिड़ी सूरताल पैदा करण वारी कोशिश खे कानून मूजिबि बिना कंहिं फ़र्क़ जे फैसलाइते अंदाज़ में नाकाम बणायो वेंदो। फोम पारां पाक सऊदी ऐं तुर्किया दिफ़ाई मुआदे जे आजियां कश्मीरियुनि जे इख़्लाक़ी मदद जारी रखण वारे अज़म जो वर्जाओ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो त क़ौम जी हिमायत सां फ़ौजी मुल्की ख़ुदमुख़्तियारी इलाइक़ाई सालमियत ऐं क़ौमी सलामती जे तहफ़ुज़ लाइ तयारु आहे। हुकूमत हफ़्ते जे आख़िर में ईंदड़ टिनि ॾींहनि लाइ पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाधि करे छॾी। पेट्रोल ₹2.10 ऐं डीज़ल ₹3 फी लीटर महांगो। पेट्रोल जो नओ अघु ₹392.76 ऐं डीज़ल जो नओ अघु ₹399.64 थी वियो। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोल ऐं डीज़ल जा नव अघु 3 खां 5 अक्टूबर ताईं लागू हूंदा। हुकूमत जो सोमालिया में शहीद थियल टिनी पाकिस्तानियुनि जे पोइरनि लाइ माली मदद जो ऐलान। शहीदनि जे पोइरनि खे ₹1.25 करोड़ ॾिना वेंदा। शहीद थियलनि जे ॿारनि लाइ मुफ़्त तइलीम, तिबी सहूलियतुनि ऐं रिहाइश जो ऐलान बि कयो वियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां शहीद काशिफ़ उमर जे पुट सां राब्तो करे तज़िया जो इज़हार। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे तव्हांजे ॾुख में बराबरि जा शरीक आहियूं, अकेलो न छॾियो वेंदो। ॿी पाकिस्तानी अमले जे हिफ़ाज़त सां वापसी लाइ हर मुमकिन क़दम खयो वियो।

0: एमरजेंसी जी हिमायत न कंदी।
1: दिल्ली नौशरफ फिरोज की सजे की गाल क्या सिविल हॉस्पिटल नौशरफ फिरोज की गाल क्या इतने का भी सहूलियात को रुको था मिलन
2: नौशरफ फिरोज से जुल्म हुआ पर नौशरफ फिरोज से का बुनियादी सहूलत को मिली
3: सही ये अस डिस्ट्रिक्ट नौशरफ फिरोज सिविल हॉस्पिटल आते तेजी मेल विजिट कद तो मरीज के जो पंजे रुपये सिरन जो कान थी मिले
0: असांखे ई पाउचिन कोन थी मिले असां ॿार हणी 1500 रुपए जी पाउचिन हर हफ़्ते हणायूं
4: था हिते का सहूलियत आहे को न कोई एपोजन का इंजेक्शन केॾीमहिल पेपर टेप बि न आहे नॉर्मल सलाइन न आहे
2: पेपर टेप बि नथी मिले
4: न उहा बि नथी मिले उहा पाण था घुरायूं
5: पंहिंजी चऊं था दवाऊं त ख़ैर पंहिंजे पैसनि सां वठूं था हिकिड़ी ज़रूरत हूंदी आहे
6: 2022 खां पोइ 2024 में सेंटर जी हालत तमामु ख़राब थी वई ऐं मशीनूं टुटल बचियूं चार वीडियो ठाहींदो त हुन में छत कुदरती तौर ते असां राउंड पे कंदो छत किरी पिया बिल्डिंग इहे कंडम आहे सर
7: या ॿिया जेको डॉक्टरनि में हिकिड़ी हूंदी हुई रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी उहो बि नथो नज़र अचे
8: रेडियोलॉजिस्ट जंहिंमें असां जेको MLC थिए थी त असां हुननि खे नवाबशाह मोकिलींदा

मुशरफ रो ज़िले जी सभ खां वॾे अस्पताल बुनियादी सहूलतुनि खां महरूम। अस्पताल में ट्रामा सेंटर आहे, न वरी सर्जन। इलाज जूं सहूलतूं अणलभ। मरीज़ दवाऊं खांगी स्टोरनि तां ख़रीद करण ते मजबूर। हादसनि जे मामूली ज़ख़्मनि खां वठी दिलि जे बीमारियुनि जे ईंदड़ मरीज़नि बि नवाब शाह अस्पताल रेफर कयो वञे थो। कराची में सीवीओ भरिसां क़तूल थियल प्रॉपर्टी डीलर जे केस में मक़बूर आई। पुलिस क़तूल में मुलवस पुलिस जे हाज़ुर सर्विस अहलकार खे गिरफ़्तार करे वरितो। पुलिस जो चवणु आहे त गिरफ़्तार जवाबदार फॉरेंसिक सिक्योरिटी सेल में मुक़ररु ऐं कॉन्सुलेट ते ड्यूटी करे रहियो हो। बाक़ी वक़्तु जवाबदार यूनिफॉर्म में गाॾी अंदरि मौजूदु हो। फायरिंग खां पोइ हलंदड़ गाॾी मां टपो ॾेई फरार थी वियो। जवाबदार पुलिस में भर्ती थियण खां अॻु मक़तूल जो सिक्योरिटी गार्ड हो। वक़्त जांच कई पई वञे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
2: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
4: सुपर वाइट
5: सिंध के माथे का झूमर
6: GFM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज
7: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولو ان قرانا سيرت به الجبال اور اگر قرآن کے ساتھ پہاڑ چلائے جا سکتے یعنی اگر کوئی ایسا قرآن اتارا جاتا کہ جس سے پہاڑ چلائے جا سکتے او قطعت بہل ارض یا زمین کاٹ ڈالی جاتی پھاڑ دی جاتی او کلما بہل موتا یا کلام کیے جاتے ساتھ اس کے مردہ تو پھر ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل تھا کر دیتا

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हुकूमत ऐं पीटीआई विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर अॼु ॿीहर थींदो। हुकूमत ऐं पीपल्स पार्टी जो अपोज़िशन खे क़ौमी मसइलनि जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए गॾण ते ज़ोर। ॿिन्ही धुरियुनि जूं ॻाल्हियूं जारी रखण ऐं अॼु ॿीहर गॾिजाणी करण ते इतफ़ाक़। स्पीकर ऑफिस पारां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त हुकूमत पीपल्स पार्टी ऐं अपोज़िशन विच में मुल्की सियासी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं थियूं। हुकूमत पीपल्स पार्टी ऐं अपोज़िशन हिक ॿिए खे पंहिंजे मौक़ुफ़ खां आगाह कयो। स्पीकर अयाज़ सादी ॻाल्हियुनि लाइ अहम किरदारु अदा कयो। ॻाल्हियुनि में हुकूमत तर्फ़ां घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी, राना सनाउल्ला, अमीर मक़ाम तारिक फज़ल चौधरी ऐं तलाल चौधरी शरीक थिया। पीपल्स पार्टी जी नुमाइंदगी श्री रमा नवीद कमर ऐं एजाज़ जखराणी कई। पीटीआई वफ़द में बैरिस्टर गौर, राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम, राजा असद कैसर, आमिर डोगर ऐं हलीम आदिल शेख शामिल हुआ।
1: पहला मरतबा है कि हमारी

0: की क्या लॉन्ग मार्च के बारे से मैं इतना बोलूँगी जो पाकिस्तान की दुश्मनी का मौका है तो पास में
1: चलने
0: गए मशहूर तरीके से लॉन्ग मार्च को तो खत्म ही करना होगा, मजबूर नहीं मनसूख नहीं पोस्टपोन नहीं खत्म करना होगा, क्योंकि ये जो लॉन्ग मार्च ये कर रहे हैं ये मुस्तकिल एक दहशत गर्दी की कोई कितनी मैसेज चल रही है, चाहे वो टीटीपी जो भी है, बहुत सारे ग्रुप हैं। हम जब देखते हैं कि सूरत हाल ये है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, फौजी शहीद हो रहे हैं, पुलिस शहीद की शहादत हो रही है, तो पीपल्स पार्टी का तो मौका नहीं रहा है कि हम दहशत गर्दी के ये हमारी रेड लाइन है।
2: पीपल्स पार्टी पीटीआई खां एक भेरो बीहर लॉन्ग मार्च गैर मशरूत तौर खत्म करण जो मुतालबो करे छो। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो सरदार हुकूमत ए मुखालिफ धुर विच में गालियों के सुठो साउंड करार डेंदे है तो मुखालिफ धुर पंजो लॉन्ग मार्च गैर मशरूत तौर खत्म कंदी। पाड़ेसरी मुल्कन में दहशतगर्द ग्रुपन के मिलंदड़ फाल हमायत गणती जोगी है। सेनेटर श्री रमा है लॉन्ग मार्च की तारीख वधाण या मुलतवी करण से मसलो हल नी पीटीआई लॉन्ग मार्च खत्म करे। इस्लामाबाद में कोप रोड बंद नए हाईकोर्ट की हिदायतों से एहतियाती तौर कंटेनर्स रखा वाया। हिफाजती कदम जो मकसद शहरियों के जान माल बुनियादी ढांचे असास ठिकाण जो तहफुज है। इतलात वे वजारत इस्लामाबाद में रोडन की मुबैना बंदिश वारू खबरू रद्द कर छ्यूं। जारी कल बयान में लागापल पार्टी के माजी के परतशद वाक्य नजर आडो रखो वो है। इस्लामाबाद में शहरियों की कानूनी चुरपुर जारी है। कंटेनर के मौजूदगी के रोडन के बंदिश करार दिन हकीकतों के उबतड़ा है। अड़ी नोयत के मुख्तरफी रिपोर्टिंग अवाम में गुमराह कंदड़ नाकारी तासुर पैदा करे थी। नव मई जड़ी सूरत हाल या वगोड़ पैदा करने वाली कोशिश के सख्ती से मुंह दिनो वो कोर कमांडर वाजे कर छो है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदारत हेठ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल जो जायजो वरतो हो। हर किस्म के खतरन के मुंह दियण आला सतही ऑपरेशनल तैयारी बरकरार रखने वाले आजम जो वर्जाव। पाकिस्तान के दिफाई हक वाले आजम जो तौसीक। अफगानिस्तान में जन्म वठंदड़ दहशतगर्द के खिलाफ टारगेट कार्रवाई जारी रखने वाले आजम जो वर्जाव। दहशतगर्द के सहूलत कंदड़ सालबान क्यादत नतीजन के जिम्मेवार करार। दहशतगर्द खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की सारा। नेशनल एक्शन प्लान तहत अवाम के इतफिलात बदल हुकुमरानी। दहशतगर्द डोहार के गठजोड़ जो खात्मो पुलिस के सग में वाद हंटर करार। एसपीआर मौजूद कैंप बहाने से इंतशार पकड़ या नव मई जड़ी सूरताल पैदा करने वाली कोशिश के कानून मूजिब बिना का फर्क के फैसलाइते अंदाज में नाकाम बढ़ाया वो। फॉर्म पारा पाक सऊदी ए तुर्किया दिफाई मुआदे के आजिया कश्मीर के इखलाकी मदद जारी रखने वाले आजम जो वर्जाओ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कौम की हिमायत से फौजी मुल्क की खुदमुख्तियारी इलाकई सालमियत कौमी सलामती के तहफुज लाए तैयार है। हुकूमत हफ्ते के आखिर में इंदड़ टिन दिन पेट्रोलियम शयों के अघन में वाद कर छी। पेट्रोल रुपया 10 पैसा डीजल 3 रुपया फी लीटर महंगो। पेट्रोल जो नोग 392 रुपया 76 पैसा डीजल जो नोग 399 रुपया 64 पैसा थी वो। पेट्रोलियम डिवीजन पारा जारी कल नोटिफिकेशन मूजिब पेट्रोल ए डीजल जहा नव अघ 3 खां 5 अक्टूबर तीन लागू हूँ। हुकूमत सोमालिया में शहीद थियल टिन्ही पाकिस्तान के पोरन लाए माली मदद जो ऐलान। शहीद के पोरन के 1,25,00,000 रुपया दिना वा। शहीद थियल बार मुफ्त तलीम तिबी सहूलत रहायश जो ऐलान भी किया वो। वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा शहीद काशिफ उमर के पुट से राबो कर तजियत जो इजहार। शहबाज शरीफ तवाज दुख में बराबर जहा शरीक आयू अकेलो न छो वो। बी पाकिस्तानी अमले के हिफाज से वापसी लाए हर मुमकिन कदम खो वो। Oh.

0: बलोचिस्तान के शहर विंदर में ईरानी पेट्रोल खड़ी वींदड़ मोटरसाइकिल सवार के कोच जो टक्कर हादसे सबब पेट्रोल के बाह लगी वही टई मोटरसाइकिल सवार सड़ी फोती वाया मुसाफिर कोच गवादर खां कराची अची रही हुई तो विंदर भरसा हादसों पेश आयो फोतियों की सुणप शफीउल्लाह मोहम्मद नवाज जहूर अहमद के नालन से थी है कोच में सवार कुछ मुसाफिर शीशा टोड़े जान बचाने में कामयाब थिया भारतीय बॉर्डर फोर्स के बिना जवाब फायरिंग बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद एक जख्मी सिक्योरिटी जरिए चवण है तो बॉर्डर पिलर का कुछ कदम अगते वन बी एफ सी फायरिंग कई टिन पाकिस्तानी शहरी के कसूर वेझो बिना वार्निंग के निशानों बनाया फायरिंग में उज़मत रसूल और मोहसिन जट शहीद थे टिन्ही शहर में कं भी बॉर्डर फेंस पार करण की कोशिश न कई हुई भारतीय फौज के शहरियों से फायरिंग वो वाक्य सरहदी मुआहदे एस ओ पी से खुली भंजकड़ी है सखा मथे मुल्क मका दिफाई मुआहदे में शामिल चाहन था सऊदी अरब से 17 कारण हमला थी चुका है पाकिस्तान सऊदी के दिफा जो पाबंद है नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ईरान अमेरिका 47 वीरन का इस्लामाबाद में गाल ईरानी सदर पज़िश्कियान इराकी की ख्वाहिश है कड़ी तरह से मामलो खत्म थे अफगानिस्तान पंज सरजमीन पाकिस्तान खिलाफ इस्तेमाल थे न दे भारत गलत बयान सबब पंजे साख विञाए वेठो है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूथर पारकर के बिन डीह के दौरे दौरान डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स मिठी और बार के नए इमारत जो इफ्ताह कर छो चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूथर पारकर बार एसोसिएशन के नए चूंडियल बॉडी का हलफ पिण वरतो तकरीब के खिताब कदे संदस चवण हो तो वकील जरिए ही कमजोर के सहारो मिले तो इंसाफ समने इखलाकी कदरों जो बुनियाद है इंसाफ लाए गैर जामदार मुंसिफाने अदालत निज़ाम की जरूरत होंगी है थर पारकर जड़े इलाके में अदालत पारा इंसाफ जो वो अमल खसूसी तौर से एक तरक्की याफ्ता समाज लाए तमाम जरूरी है वे वजीर पारा सूबे में अपग्रेड स्कूल 2 अप्रैल 2027 फाल कर हिदायत वे वजीर सैयद मुराद अली शाह की सदारत हेड स्कूल एजुकेशन खाते जो इजलास मुराद अली शाह पारा शागिर्दन की दाखिला वधाने लाए भरपूर मल्हाने की हिदायत वे वजीर अपग्रेड थियल स्कूल में उस्ताद शागिर्दन तलीमी सहूलतू पर मौजूद हुजन रुगो स्कूल तामीर कर मकसद ना है बार दाखिला मयारी तलीम यकीनी बनाने है पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज जहाज जिक्र कर मीडिया से नाराज लाहौर में तकरीब खिताब कदे मरियम नवाज रुगो जहाज से गालू थी रही है जहाज रायविड न खड़ी वेंदस पर वनो हों मोटरसाइकिल से न वेंदस लिया डेरा गाजी खान भी मोटरसाइकिल से नींदस अवं चो मु करोड़ मानून जो इलाज करायो मीडिया चवंदी जहाज अवं चवंदा 2 लख घर ठाया मीडिया चवंदी जहाज इनके मरियम नवाज की 5 साल की हुकूमत में जहाज का सिवा कुछ न मिलंदो पीटीआई वफद की जमायत इस्लामी के अमीर हाफिज नईम रहमान से मुलाकात ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दिनी हाफिज नईम रहमान मसलन जो हल गाल जरिए निकली सके तो जमायत इस्लामी केपी में गवर्नर राज एमरजेंसी की हमायत न कंदी
1: दिल्ली नौशरफ फिरोज की सजे की गाल क्या सिविल हॉस्पिटल नौशरफ फिरोज की गाल क्या इतने का भी सहूलियत को रुको था मिलन
2: नौशरफ फिरोज से जुल्म विवाद 36 साल गुजरी वह नौशरफ डिस्ट्रिक्ट तो बनो पर उनके बावजूद नौशरफ फिरोज से का बुनियादी सहूलत को मिली
3: सही ये अस डिस्ट्रिक्ट नौशरफ फिरोज सिविल हॉस्पिटल आते जी मेल विजिट कौन तो मरीज के जो 5 रुपये सिरिंज आन थी मिले
0: चार महीना टे महीना थी आया असा ई पाउजिन को मिली अस बार हणी 1500 रुपये की पाउजिन हर हफ्ते हणायू
4: का सहूलत है कोई का इंजेक्शन केड़ी मल पेपर टेप ना है नॉर्मल सलाइन ना है
5: पेपर टेप भी नहीं मिले
4: ना वो अब नहीं मिले वहाँ पान
6: घुरा खैर पैसों से वटू था एक जरूरत होंगी है
7: 2022 का 2024 में सेंटर की हालत तमाम खराब थी हुई मशीन टुटल बचू चार वीडियो ठाई तो उनमें छत कुदरती तौर से राउंड पे तो छत किरी पे बिल्डिंग ये कंडम है सर
8: या जो डॉक्टर में होंगी हुई रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी वो भी नो नजर अचे
9: रेडियोलॉजिस्ट जैमें असो MLC थे असन के नॉब शाह मोकिल

नौशहरो फिरोज जिले जी सब खां वॾे अस्पताल बुनियादी सहूलतुनि खां महरूम। अस्पताल में ट्रामा सेंटर आहे, नए वरी सर्जन इलाज जो सहूलतूं अणलब, मरीज दवाऊं खांगी स्टोरनि तां ख़रीद करण ते मजबूर। हादसनि जे मामूली ज़ख़्मनि खां वठी दिलि जे बीमारियुनि जे ईंदड़ मरीज़नि बि नवाब शाह अस्पताल रेफर कयो वञे थो। कराची में सीवीओ भरिसां क़तूल थियल प्रॉपर्टी डीलर जे केस में आम अघुराई। पुलिस क़तूल में मुलवस पुलिस जे हाज़ुर सर्विस अहलकार खे गिरफ़्तार करे वरितो। पुलिस जो चवणु आहे त गिरफ़्तार जवाबदार फॉरेंसिक सिक्योरिटी सेल में मुक़ररु ऐं कॉन्सुलेट ते ड्यूटी करे रहियो हो। बाक़ी वक़्तु जवाबदार यूनिफॉर्म में गाॾी अंदरि मौजूदु हो। फायरिंग खां पोइ हलंदड़ गाॾी मां टपो ॾेई फरार थी वियो। जवाबदार पुलिस में भर्ती थियण खां अॻु मक़तूल जो सिक्योरिटी गार्ड हो। वधीक जांच कई पई वञे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिपके चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
2: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
4: सुपर वाइट
5: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਅਨਲ ਹੱਕ ਅਲੇ ਦਾ

सुनते हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेहे में आहिन चावरन जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के ब्लॉक करे आई चावरन जो खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन बीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैं जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
2: सुनते रहो GFM 90.8।

रतो दोरो में हथियारबंदनि जी फायरिंग वाटेड़ो समेत पंज ॼणा क़तल। जेकमा बाद रोड ते दुकान ते हथियारबंदनि जी फायरिंग में घांगरा बरादरीअ जा चार ॼणा हिकु वाटेड़ो क़तल। मारजी वेलनि में रियाज़ हुसैन घांगरो, रजब कुर्बान, बिलावल घांगरो ऐं अब्दुला शामिल आहिनि। पुलिस जो चवण आहे त घांगरा बिरादरी जे मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि सां तकरार हलंदड़ आहे। वधीक जांच कई पई वञे।

सिक्योरिटी फोर्सेज जो केपी के बलोचिस्तान में कार्रवाई हुई 11 दहशतगर्द मार जी विया। सिक्योरिटी जरिए मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेज ॾखण वज़ीरिस्तान में फितल ख़ारिजीन जे दहशतगर्दनि जे थाकन खे निशानो बणायो। कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मार जी विया बलोचिस्तान में। ऑपरेशन रदुल फितना 3 बि जारी आहे। माशकेल में पुलिस चौकीअ ते हमले बाद फरार थींदड़ 6 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी जे मुकमल ख़ात्मे ताईं पुरअज़म आहे। हुकूमत ऐं अपोज़िशन ॻाल्हियुनि जो ॿियों दौर अॼु शुरू थींदो। ज़रियनि मूजिबि अपोज़िशन पंहिंजा मुतालबा हुकूमत खे पेश करे छॾिया आहिनि। पीटीआई बानी जे इस्पताल मुंतकिले जे अदालती फ़ैसिले ते अमल करण जो मुतालबो हुकूमत अपोज़िशन खां लॉन्ग मार्च मुल्तवी या ख़तमु करण जो मुतालबो कयो आहे। अदालती फ़ैसिले ते अमल दरामद जी ख़ातिरी बि कराई। हुकूमत हफ़्ते जे आख़िर में ईंदड़ 3 ॾींहनि लाइ पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाधि करे छॾी। पेट्रोलियम 2.10 रुपया ऐं डीज़ल 30 रुपया 30 पैसा फी लीटर महांगो। पेट्रोल जो नओं अघु 392.76 रुपया ऐं डीज़ल जो नओं अघु 399.64 रुपया थी वियो। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां जारी कयल नोटिफिकेशन। गंबट में आरिजा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़े में मारिजी वियल हिकु ॼणे जो केस दाख़िल। नौजवान अजीब आरिजो जे क़तल जो केस संदसि अमर जी फरियाद ते 3 जवाबदारनि ख़िलाफ़ दाख़िल। मुख्य जवाबदार ताहिर आरिजो गिरफ़्तार। जमाल शाह भरसां बारडो वाटर कोर्स में ॿुॾी फोत थी वियो। ॻोठु जाम खान ज़रदारी में 12 वरनि जो अहमद ज़रदारी वाटर कोर्स में ॿुॾी फोत थी वियो। वारसनि मूजिबि नींगर मिर्गीअ जो दौरो पवण सबबि वाटर कोर्स में किरी ॿुॾी फोत थी वियो।

0: क्या आपको मालूम है कि छाती का कैंसर एक
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिपके चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
3: अच्छा वेरियंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है सुपर

0: सिंध के माथे का झूमर
1: जी एफ एम 88 नेटवर्क
0: सिंध की आवाज़।

भी दिलों को चाहत से फटा करते हैं, लोगों के दिलों को हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। Assalamualaikum. You are showing into your video FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम सा दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार सिंध की आवाज। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई होप सकी जी जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल टिप टॉप सेट कूल, एक साउंड एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं पूरे पूरे एक बजे तक। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है। जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स। सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स जो कि आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं 11:14 जो कि पाकिस्तान का मेरी वक्त है, तमाम तो लोगों की घड़ियों में बज रहा है और वो तमाम तो लोग जो कि हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हाँ वो सेफ सेफ जर्नी। बट अल्लाह देना अगर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। खुदा खैरियत है मौजूदा और तब के लिए खुदा खैरियत है।

वो तो मानते लोग जिन लोगों की सालगिरह उनको कहेंगे मनी मनी हैप्पी बर्थडे सर रे हैप्पी बर्थडे टू यू. उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ नहीं स्पेंड करना चाहते हैं विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए. इसके अलावा शहरों और शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परिस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबा बेगम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगले जी आया नसर बिस्मिल्लाह वाजोर शाह निहाओ एंड वेलकम टू जिंदगी गुलजार है. प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को सुनाने को समझने को समझाने को सीखने को सिखाने को बोलने को बुलवाने को और वो सारी बातें सुपरवाइज बाय अक्सर कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स को लेकर जो मैं आपसे करना चाहती हूँ या जो आप मुझसे करना चाहते हैं वो सब आपसे करेंगे. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना और इसी के साथ हम चलेंगे आगे. एंड हियर कम्स आसिम अज़हर विद द ब्यूटीफुल सॉन्ग. सुनते हैं एंजॉय करते हैं आगे चलते हैं.

Okay, G. Zindagi Gulzar is sponsored by Super White Products by Aksa Cosmetics. Aur isi ke saath hum chalenge aage ji aur Super White ke products ke baare mein aapko batayenge. Aur Super White ke products ke taun se hi aap ye program sun rahe hote hain. Ye khoobsurti bhara khoobsurat se safar jo ke pure pure 1 baje tak daily basis pe aap log enjoy kar rahe hote hain. So exactly aaj bhi karenge. And Super White ke products ke baare mein agar baat ki jaye to hamesha ki tarah Super White ke products super se bhi upar hain. Aur Super White ke products jo ke wo lekar aate hain sirf aur sirf aap logon ke liye. Aur Super White ke products mein Super White oil free beauty cream, Super White oil free beauty soap aur iske bahut sare products jo ke aap log use kar rahe hote hain ya agar aapne abhi tak use nahi kiye hain to bahut badi galti kar rahe hain. Theek hai ji, Super White ki vitamin C brightening cream aati hai, Super White ka vitamin C face wash aata hai, iske alawa Super White ki strawberry beauty cream aati hai, Super White ka strawberry brightening face wash aata hai, iske alawa Super White ki turmeric beauty cream aati hai, Super White ka anti dullness face wash aata hai ji, ye aata hai turmeric cheek hai, aur Super White ki rice beauty cream aati hai, Super White ka rice beauty soap aata hai, Super White ka rice collagen anti acne cream bhi aati hai ji, aur iske ilawa inka ek adad Super White rice serum bhi aata hai jisko include karne se, jisko add kar dene se aapke jo cream ke result hain wo double se triple ho jate hain aur mazid aur enhance ho jate hain. तो ये कमाल की बात है. इसके अलावा सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी सोप, इसके अलावा सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, ठीक है. तो ये है सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स. और जी, सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम जिसको हम बूस्टर भी कह सकते हैं जी, अल्फा आरबोटीन इसमें मौजूद है, नाइसिनमाइड इसमें मौजूद है, वाइटामिन B3 एंड कोजिक एसिड इसमें मौजूद है. तो ये तमाम प्रोडक्ट्स जो कि अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए बनाते हैं. और क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपकी स्किन हो रही है डल, आपकी स्किन हो रही है बेरोनक, और आपका कॉम्प्लेक्शन हो रहा है डाउन, या फिर आपके फेस के ऊपर हो रही है एक्नी, एक्नी के निशान, बहुत सारी छाइयां, ये सब कुछ हो रहा है, तो टेंशन वाली बात नहीं, टेंशन को खत्म करने वाली बात है. और वो बात है जी सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स की. सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स की बातें हम आपसे पूरे पूरे 1 बजे तक करते रहेंगे और आप हमसे करते रहेंगे. तो सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने सबसे पहले बाय करना है मार्केट जाके, ठीक है. आप कौन सा किस लिए बाय करेंगे वो तो आपको 2 दिन में अंदाजा हो ही चुका होगा, लेकिन जिन लोगों को अभी तक अंदाजा नहीं हुआ है उनको अंदाजे हम लगवा देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है. सो जी, सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जो कि आप लोग यूज करेंगे, इसके फॉर्मूलाज भी बना के आप लोग यूज कर सकते हैं. फॉर्मूला कैसे बनाना है वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, और जिन लोगों को नहीं पता उनको पता चलेगा. और जो कोरियन ग्लास स्किन हासिल करना चाहते हैं या अपनी स्किन को बनाना चाहते हैं, तो कोरियन ग्लास स्किन को बनाने के लिए आप लोग यूज करेंगे सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट का राइस फेस वॉश, ठीक है. तो इसको यूज करने से आपकी जो डलनेस है वो खत्म होती है, चेहरे के ऊपर ग्लो आता है, ओपन पोर्स मिनिमाइज होते हैं, और आपकी खूबसूरती बढ़ती चली जाती है डे बाय डे.

0: आप लोग प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी. और प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करने के लिए आप लोगों ने करना यह है कि सबसे पहले वो तमाम तो लोग जो कि सिंपली मैसेज करना चाहते हैं, जो सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, एस के आर टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 1 पे. और कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा, दैट इज www.facebook.com/gfm88 और जी लालकाना FM 88.8. इस पेज के ऊपर आने के बाद आपको मिलती है एक अदर लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग जो कि होती है जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर 03000113488. इसके ऊपर कॉल करेंगे आप लोग, ठीक है, और मुझे ज्वाइन करेंगे. और ज्वाइन करने के बाद मुझसे बात करेंगे, ठीक है. तो जी इसके अलावा हम चलेंगे आगे और प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे एक और गाना. और वो जो एक और गाना है मैं सोच रही हूँ कौन सा होना चाहिए, और वो गाना बड़ा अच्छा होना चाहिए, तो हम अच्छा सा गाना प्ले करेंगे.
1: पास हो मानू ना सारी अपनी गलती, ढूंढे के साथ में कोई अलबी, जे तू कवे तेरा आज भी मैं दूर.
0: और गाना प्ले करने जा रहे हैं जी एक और ब्यूटीफुल, एंड हियर कम्स द ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय बिलाल महेसर. इसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है. Sponsored by Super White Products by Aksa Cosmetics.
2: तो उनका दोस्त होने का टीवी हक्की मुड़े. तो आज भी इसी हक्की में कहे खिले पे हो. ताकि पूछो तो छोकरों के लिए. तो आज के

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: सचल की सर मस्त धरती,
3: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान.
2: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज.
4: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो. हटो पीछे, भागो.
5: अहमद, हटो वहां से.

0: ऐं बेरोन की स्किन हण इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ टिनि ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हर हर ॾींहुं रहो ब्यूटिफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अगर आप भी किसी न किसी डलनेस का शिकार हैं या एक्ने का शिकार हैं, एक्ने को फेस कर रहे हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, ब्राउन कॉम्प्लेक्शन को फेस कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आप लोग यूज कर सकते हैं. क्या यूज करेंगे? सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम को. अच्छा, सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम खास तौर पे उन लोगों के लिए ज्यादा इफेक्टिव है जिनके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाती है. पिगमेंटेशन हम किसको कहते हैं जी? छाइयों को. छाइयां जब फेस के ऊपर हो जाती हैं तो वो काफी टाइम तक नहीं जाती. बहुत सारे लोगों को बहुत सारे खाने पीने से एलर्जी हो जाती है, एलर्जी की वजह से भी हो जाती है, या बहुत सारे लोग जो कि आयरन कंज्यूम नहीं कर रहे होते उसकी वजह से भी हो जाती है. तो उसको खत्म करने में एक अरसा लग जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये अरसा ना लगे और ये जल्दी जल्दी से जो है खत्म हो जाए और इसमें कोई बेहतरी नजर आ जाए, तो वो आप लोगों ने यूज करनी है सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम. सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम जो कि एंटी एजिंग भी है और आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को मुकम्मल तौर पर खत्म करेगी, क्योंकि विटामिन सी पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है और बहुत ज्यादा मुफीद होता है. तो पिगमेंटेशन को खत्म करेगा और विटामिन सी ब्यूटी क्रीम जो कि सुपर वाइट वालों की है, इसमें बहुत सारे ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो कि आपकी स्किन से पिगमेंटेशन का नामो निशान तक खत्म कर देंगे. इसमें मौजूद है लेमन के नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स और नीम के एक्सट्रैक्ट्स और विटामिन सी. तो ये सब कुछ मिलकर आपकी स्किन से खत्म करते हैं जी एंटी एजिंग लाइंस को, ब्राइटन अप करते हैं आपकी स्किन को, पोर्स को मिनिमाइज करते हैं. अब इसके फायदे गिनते जाएं और आपकी ब्लेमिशेस को खत्म करते हैं, डार्क स्पॉट्स को खत्म करते हैं, एजिंग स्पॉट्स को रिड्यूस करते हैं जी, और फेयरनेस को इंक्रीज भी करता है. ठीक है जी, तो ये इतने सारे फायदे जो कि एक ही ब्यूटी क्रीम के अंदर मौजूद हैं, और वो ब्यूटी क्रीम है सुपर वाइट की वाइटनिंग विटामिन सी ब्यूटी क्रीम. मजे की बात यह है कि इसमें एक्टिव फ्रूट बूस्टर्स भी मौजूद हैं जो कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी हैं. तो ऑल स्किन टाइप्स वाले लोग इसको लगा सकते हैं, चाहे आपकी स्किन नॉर्मल हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो. तो ये सबको खत्म करेगा, मतलब कि सारी स्किन टाइप से सारे मसले मसाइल को खत्म करेगी विटामिन सी की क्रीम सुपर वाइट वालों की. ठीक है जी, तो सुपर वाइट की ये क्रीम जो कि लाइट वेटेड है, डेली यूज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, आप इसको डे में भी अप्लाई कर सकते हैं, नाइट में भी अप्लाई कर सकते हैं. आपका जो नेचुरली कॉम्प्लेक्शन डाउन हो चुका है उसको रेडिएंट करेगा, स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाएगा, आपकी स्किन को रिफ्रेश करेगा. और आप लोगों ने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, सबसे पहले आप लोगों ने इसको यूज करना है. यूज करने से पहले विटामिन सी फेस वॉश से फेस को वॉश करना है, सुपर वाइट का विटामिन सी फेस वॉश. उसको अच्छे तरीके से फेस को वॉश करें उससे, एंड इसके अलावा ड्राई होने तक छोड़ दें, और फिर ड्राई होने के बाद अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें विटामिन सी की क्रीम, सुपर वाइट की विटामिन सी ब्यूटी क्रीम. और सुपर वाइट की विटामिन सी ब्यूटी क्रीम को अप्लाई कर लें जेंटली अपने फेस के ऊपर, अपने नेक के ऊपर. ठीक है जी, तो आप इसको हाथ और पांव पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर कोई हल्की फुल्की टैनिंग हो गई है गर्मियों की वजह से, फिर अब तो गर्मी जा रही है, तो गर्मी जो टैनिंग छोड़ गई है उसको भी तो खत्म करना है ना. तो गर्मी की टैनिंग को खत्म करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं अपने हाथ और पांव के ऊपर भी, तो ये आप लोग कर सकते हैं. तो आपको इसके बहुत ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे. अच्छा, साथ साथ हम कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ भी मूव करते हैं जी. एंड कमेंट्स और मैसेजेस जो कि आप लोगों के मुझे बहुत सारे रिसीव होते जा रहे हैं, साथ साथ आप लोगों की कॉल्स को भी इंटरटेन करेंगे हम. एंड मुश्ताक अहमद कुंबर से हमें सुन रहे हैं, आपका प्रोग्राम बहुत नाइस है, थैंक यू सो मच. रशीद खोसो हमें सुन रहे हैं, अब्दुल रजाक कुंबर से हमें सुन रहे हैं, अर्ज मोहम्मद गोला हमें सुन रहे हैं जी, थैंक यू सो मच. और इसके अलावा जी अर्ज मोहम्मद गोला, इसके अलावा हाफिज यूनुस बाबर हमें सुन रहे हैं, मलिक नजर मोहम्मद हमें सुन रहे हैं जी, थैंक यू. कॉल्स का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, लेकिन कॉल्स को लेने से पहले मैं कॉल्स का रूल बता दूं जरा. वो लोग जिन लोगों ने कल और परसों कॉल की थी वो आज कॉल नहीं करेंगे, डेली बेसिस पे वही चार पांच कॉलर्स सेम नॉट अलाउड. ठीक है, तो ये हम नहीं करेंगे. और इस बात का खास ख्याल रखते हुए आप ये ना कहिएगा कि आपने कॉल ड्रॉप कर दी. अगर आपने कल कॉल की है आज कॉल करेंगे, ठीक है, मैं कॉल ड्रॉप कर दूंगी. तो बेहतर है कि आपने दो दिन का गैप देके कॉल करनी है, तो आप लोगों की कॉल्स को हम रिसीव करेंगे, और जब हम कॉल्स को रिसीव करेंगे तो फिर अच्छा भी लगेगा कि देखिए बहुत सारे लोग नए भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बहुत सारे हमारे जो पुराने लिसनर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ में कॉपरेट भी कर रहे हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी. तो ये चीज़ है, तो ज़रूर 03000118 के ऊपर आप लोग कॉल कर रहे हैं मुझे, और फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल मैं उम्मीद करूंगी सेम कॉलर नहीं होगा. हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: हाफिज लखमीर बोल बात हुआ, हाफिज लखमीर बोलो से बात कर रहा
0: हूँ. हाफिज लखमीर कैसे, ठीक ठाक?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक ठाक है?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: जी जी प्रोग्राम सुन रहा हूँ. सुपर व्हाइट आयल ब्यूटी क्रीम, आयल थ्री ब्यूटी क्रीम.
0: सुपर व्हाइट ब्यूटी क्रीम, तो सुपर व्हाइट ब्यूटी क्रीम कब यूज कर रहे हैं और सुपर व्हाइट का कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे?
1: हम बस इंशाल्लाह आज लेने जाएंगे.
0: ओके, जरूर लीजिए, और लेने के बाद जो रिजल्ट मिले मुझे जरूर बताइए. अच्छा, हमारा सेगमेंट है जी सुर लगाओ गाना सुनाओ, तो सुर लगाओ गाना सुनाओ में कौन सा गाना सुना रहे हैं जल्दी से?
1: हाँ गाना सुनाओ आपको.
0: यस,
1: और प्ले करना ठीक है?
0: ओके,
1: सिंगर का नाम मुझे नहीं आ रहा लेकिन प्ले करना.
0: ओके,
1: ओ दिल वाला सुखे किया विसारा तो में सजन मुझो केड़ा वही कसा खड़ा बिसर वारो अला तो में सजन मुझो दिन वारा सुखे किया विसारा तो में सजन मुझो जी.
0: ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें.
1: हमारा दोस्त है.
0: हाँ जी,
1: हाफिज सावर डिल्लू साहब, शमी डिल्लू साहब, हाफिज जानवर में डिल्लू साहब, सर दर्द और मुस्कान साहब, और जो भी सुन रहे हैं सबको मेरी तरफ से सलाम.
0: ओके जी, थैंक यू सो मच, और मेरे ख्याल से ये रहा आपका गाना.

0: एक और कॉलर. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम सरदर्द, कैसी हो? मैं भी ठीक ठाक हूँ. आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है, इसको जरा सा क्लियर कर लो सरदर्द.
1: अच्छा, अभी ठीक से आ रही है?
0: अब ठीक आ रही है. मुझे बताओ कि इतने दिन बाद कॉल कर रही हो, कैसी हो?
1: बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप तो इतने दिन बाद शुरू करें ना, दो दिन से
0: आप. मैं इतने दिन बाद, वाकई में पूरे मंथ बाद आई हूँ.
1: सांस में सांस आ गई अभी आपकी आवाज सुनते.
0: अरे वाह, क्या बात है. इसी बात पे
1: आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना मिस किया मैंने आपको.
0: मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया. आपको भी बहुत मिस किया मैंने. यस एग्जैक्टली. और जहाँ रोज मॉर्निंग में आके एक मतलब कि रूटीन बन जाना, शो करना, अपने लिसनर से कनेक्ट कर पाना, तो वो रूटीन एकदम से जो है ख़त्म हो गई थी, या ये कह लें कि एक मंथ के लिए रुक गई थी. तो डेफिनेटली जहाँ आपने मुझे मिस किया, तो वहाँ पे मैंने अपने सब लिसनर्स को भी बहुत मिस किया. यस एग्जैक्टली. इसी बात पर मुझे कोई अच्छा सा मिस करने वाला गाना सुना दो. क्या बात है. अच्छा सरदर्द, सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स कब यूज करने हैं आपने?
1: अभी तो प्रोग्राम सुनना स्टार्ट किया, सुन के फिर बता दूंगी आपको.
0: सुन के मुझे फिर बता देंगी. ओके ठीक हो गया. और कुछ कहना है? थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज जी. एंड ये रहा गाना. अच्छा मैंने इसको ना मूवी वाले वर्जन में प्ले किया है. ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है, जिस तरह सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, बिल्कुल उसी तरह.

स्ट्रॉबेरी कोरियन फार्मूला ब्यूटी क्रीम, और ये कोरियन फार्मूला जो कि आपकी स्किन को कोरियन ग्लास स्किन देगा. देखें, एक राइस ब्यूटी क्रीम है इनकी जो कि कोरियन फार्मूला से तैयार की गई है. एक सुपर वाइट की कोरियन फार्मूला स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम है. स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर में 3 दिन में विजिबल रिजल्ट देगी. ठीक है, तो को खाने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉबेरी पसंद है, अब वो लगाने में भी पसंद करें इसको और लगाएं. सुपर वाइट का कोरियन स्ट्रॉबेरी फार्मूला जो कि आपको मिल जाता है सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम में स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट के साथ. बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस, बहुत खूबसूरत टेक्सचर और बहुत ही खूबसूरत बना देने वाला फार्मूला. पहले 3 दिन में रिजल्ट देखेंगे. तो अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के ग्लो के लिए बनाते हैं. क्वालिटी पे कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और क्वालिटी वाइज बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट. और जब लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट मिलेंगे तो वो उससे भी कहीं ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट. और इसके साथ अगर इसके रिजल्ट को डबल इनहेंस करना चाहते हैं तो जी इसके साथ यूज करेंगे सुपर वाइट की कोरियन फार्मूला स्ट्रॉबेरी ब्राइटनिंग फेस वॉश.

रखे हुए हैं जी, और रखने से मकसद ये है कि सुनाने भी हैं आपको. तो हम प्ले करते हैं जी एक ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड हियर कम्स हसन रहीम एंड नताशा नूरानी. सुनेंगे इस गाने को, जाएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक और न्यूज ब्रेक की जानिब, दोनों के बाद वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

कच्चे में पुलिस ऑपरेशन दौरान गुजरियल ॾींहुं मारिजी वियल मुबैना ॾोहारीअ जो लाश वारिस बिना पोस्टमार्टम खणाए विया। गुज़िरियल ॾींहुं गोठ वरियाम जतोई में ऑपरेशन दौरान शाहबेग पुट लश्करी जतोई मारिजी वियो हो। पुलिस हदबंदीअ जो जवाब ॼाणाए पोस्टमार्टम लाइ लेटर जारी न कयो। वारिस औरत लाश बिना पोस्टमार्टम जे खणाए वई। गंबट में आरिजा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में जेड़े में मारिजी वियल हिकु ॼणे जो केस दाख़िल। मुख्य जवाबदार ताहिर आरी जो गिरफ़्तार। केस में टे ॼणा नामज़द थियल। जमाल शाह भरसां बारड़ो वाट कोर्स में ॿुॾी फोती वियो आहे। गोटियाम खां ज़रदारी में ॿारहं वारनि जो अहम ज़रदारी वाट कोर्स में ॿुॾी फोतो आहे। वाशिंग मुर्गी खे मिर्गीअ जो दौरो पवण सबबु वाट

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में A product by Aksa Cosmetics Pakistan
2: Finally अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
4: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
5: Super White!
6: अजरक के रंगों से रंगी
7: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
6: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
7: GFM 88 Network, सिंध की आवाज

once again. आ गए वापस. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स. और आप सुन सकते हैं पूरी 1 बजे तक.

0: जी सुपर वाइक के प्रोडक्ट्स और सुपर वाइक के प्रोडक्ट जिसमें आते हैं जी इनकी पेट्रोलियम जेली एंड फेस वॉशेस की बड़ी अच्छी रेंज. अच्छा मैं ब्रेक में इसके फेस वॉशेस की रेंज को देख रही थी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी. मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा फेस वॉश इसमें से अगर मुझे चूज करना पड़े तो मैं कौन सा करूँगी क्योंकि मुझे सारे ही अच्छे लगे. और पैकेजिंग इतनी कमाल की है ना, पैकेजिंग देख के ही आपका हर प्रोडक्ट पे दिल आ जाए क्योंकि हमेशा जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है ना वो बताती है कि प्रोडक्ट कैसी होगी. तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत कमाल की है, बहुत जबरदस्त थी जी. और ऐसी पैकेजिंग है कि देखते साथ ही आपका दिल आ जाए. तो फेस वॉशेस की रेंज में इनका राइस फेस वॉश आता है, टर्मेरिक फेस वॉश आता है, इसके अलावा जी इनका इनका कौन सा फेस वॉश आता है, इनका विटामिन सी फेस वॉश आता है. विटामिन सी फेस वॉश बड़ा कमाल का फेस वॉश और सुपर वाइट टर्मेरिक फेस वॉश, ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, तमाम उन लोगों के लिए जिनका फेस ऑयली है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है. ठीक है, कॉम्बिनेशन स्किन उस स्किन को कहा जाता है जिनका जो टी जोन एरिया है फेस का, यानी कि नोज से लेके कुछ फोरहेड का कुछ चिन तक, तो ये टी जोन एरिया कहलाता है जी. और ये आपका ऑयली है और बाकी सारा ड्राई है तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन. ठीक है, इसमें आपकी ऑयली स्किन भी आ गई, इसमें बाकी सारी आपकी ड्राई स्किन आ गई, तो ये कॉम्बिनेशन स्किन है आपकी. अगर आपका कुछ फेस का हिस्सा ऑयली रहता है और कुछ ड्राई रहता है तो उसको हम कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं. और जिन लोगों का पूरा फेस ही ऑयली रहता है तो उनकी स्किन टाइप है ऑयली. ठीक है, तो दोनों ही इसको यूज कर सकते हैं ऑयल कंट्रोल करने के लिए. और ऑयल कंट्रोल करेंगे इससे और फेस को इससे वॉश करेंगे, दिन में जितनी भी बार फेस को वॉश करें वॉश करेंगे और देखेंगे कि ऑयल कंट्रोल फेस वॉश को यूज करने से क्या फायदे आपको मिल रहे हैं. तो इसके जो फायदे हैं ना, एक तो ऑयल को कंट्रोल करेगा, एवोकाडो की खूबियां इसमें मौजूद हैं, आपके जितना भी मतलब के फालतू ऑयल होगा ना चेहरे पे उसको रिड्यूस करेगा. और क्या करेगा, आपको 100 ml की पैकेजिंग के अंदर मिलता है, बहुत कमाल की पैकेजिंग है जी. और इसके अलावा विटामिन सी फेस वॉश, जैसे कि मैंने कहा, उन तमाम तो लोगों के लिए जिनके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन का मसला है, पिगमेंटेशन का इश्यू है और पिगमेंटेशन नहीं जाती है, खत्म नहीं होती है, तो इसमें ऑरेंज एक्सट्रैक्ट मौजूद है, विटामिन सी एक्सट्रैक्ट मौजूद है, लेमन एक्सट्रैक्ट मौजूद है और नीम एक्सट्रैक्ट मौजूद है जो कि विटामिन सी को इसमें बनाते हैं जी. और विटामिन सी जो कि आपके पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए बड़ी इफेक्टिव रहेगी, तो इसको यूज करने से आपकी पिगमेंटेशन कैसे जाती है वो आप देखेंगे. ठीक है, तो दिन में जितनी भी बार फेस को वॉश करेंगे विटामिन सी फेस वॉश से फेस को वॉश करेंगे और फिर अपनी पिगमेंटेशन को खत्म होता हुआ देखेंगे डे बाय डे. अच्छा, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी फेस वॉश है, इनका बड़ा कमाल का और बड़ा क्यूट सा फेस वॉश है. स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के जितने भी प्रोडक्ट हैं सब क्यूट लगते हैं जी. और एंटी एक्ने भी है ये, स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट के साथ ही आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है जी, 3 दिन में विजिबल रिजल्ट देता है. अगर इसके साथ इसकी क्रीम भी यूज करते हैं तो सोने पर सुहागा. और इसके अलावा जी सुपर वाइट की टर्मेरिक ऑयल कंट्रोल एंटी ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, सुपर वाइट का एंटी ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, टर्मेरिक जो है इसमें मौजूद है, टर्मेरिक एक्सट्रैक्ट और टर्मेरिक की बहुत सारी चीजें. ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए, फ्राइनेस को बढ़ाने के लिए. तो क्या कमाल की फेस वॉशेस की रेंज. और लास्ट में हम बात करेंगे जी सुपर वाइट की राइस कोलेजन फेस वॉश की, सुपर वाइट का राइस कोलेजन फेस वॉश जिसमें कोलेजन मौजूद है, कोजिक एसिड मौजूद है, राइस की इतनी जबरदस्त किस्म की खूबियां मौजूद है जो कि आपकी स्किन को कोरियन ग्लास स्किन बना देगी कुछ ही दिन में. ठीक है, सर्दियां आ रही हैं, पेट्रोलियम जेली भी आप लोगों ने लेनी है सुपर वाइट वालों की. और सुपर वाइट वाले बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लेवर्स में पेट्रोलियम जेली भी लेकर आते हैं आप लोगों के लिए. और एक बड़ा सा जार उसका बाय कर लें क्योंकि सर्दियों में इसकी भरपूर जरूरत आपको पड़ने वाली है. आप मुझे कॉल कर सकते हैं जी 03000113488 के ऊपर. अच्छा, मैं सोच रही थी कि 2 दिन से हमने टंग ट्विस्टर नहीं खेला, तो हम टंग ट्विस्टर आज तो नहीं खेल, कल से खेलेंगे हम. एंड कॉल्स आप लोगों की लेंगे, मैसेजेस आप लोगों के इंक्लूड करेंगे और कमेंट्स आप लोगों के इंक्लूड करेंगे. शाहमीर लगा रही हमें सुन रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम सांगर, सांगर से शो जबरदस्त है, थैंक यू सो मच. अब्दुल गफ्फार रान हमें सुन रहे हैं माइनर मेलसी से, थैंक यू. हाफिज यूनुस बाबर हमें सुन रहे हैं, मलिक नजर मोहम्मद का किस हमें सुन रहे हैं, अगर मैं सही पढ़ रही हूँ आपकी कास्ट, पहली दफा रीड कर रही हूँ सॉरी. अब्दुल रजाक कुंबर हमें सुन रहे हैं, श्री रशीद खोसो हमें सुन रहे हैं, मुश्ताक अहमद कुंबर हमें सुन रहे हैं, गुलाम हुसैन अबरू लिसनर हमें सुन रहे हैं लाड़कानों से, लाड़कानों से ओके. कॉल लेते हैं जी, सेम सेम कॉलर्स आर नॉट अलाउड, इस बात को जहन में रखते हुए कॉल को करेंगे. और कॉलर मौजूद है जी, नेक्स्ट. हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन किधर से
1: बाजी? मोहम्मद आलम बात कर रहा हूँ, सलाम कंदरा से.
0: मोहम्मद आलम कैसे, ठीक ठाक?
1: दुआ दुआ अल्लाह की मेहरबानी है, शुक्र माल का एहसान है बाजी.
0: ओके, प्रोग्राम सुन रहे हैं, पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
1: हाँ नहीं, दूसरा कॉल कल की थी मैंने,
0: दूसरा चक्कर कॉल की है.
1: हाँ जी जी.
0: अच्छा, तो मुझे बताएं कि कौन सा प्रोग्राम है ये
1: बाजी? ये प्रोग्राम है जिंदगी गुलजार है.
0: जिंदगी गुलजार है, किसके तामुन से है
1: वो? सुपरवाइज.
0: सुपरवाइज के तामुन से है, ओके. तो मुझे बताएं कि सुपरवाइज के प्रोडक्ट्स को कब लेकर आ रहे हैं?
1: जल्द इंशाल्लाह खरीद करेंगे.
0: जल्द खरीद कर लें, इस ऐसा ना हो कि सुपरवाइज के प्रोडक्ट सुपर से ऊपर चले जाएं.
1: नहीं नहीं,
0: और आपका हाथ ना पहुंचे वहां तक. चलें ठीक है, ओके. और कुछ कहेंगे
1: बाजी? एक नगमा सुनाओ.
0: एक गाना सुनाए, मैं आपको दो गाने सुनाऊंगी, बताएं.
1: चिट्ठी जरा सही जिसे नाम लिखी दे.
0: ओके, जरूर सुनवाते हैं आपको, जरूर सुनवाते हैं, थैंक यू.
1: बड़ी मेहरबानी, जो सुनते हैं सारे को सलाम, आपको सलाम.
0: ओके थैंक यू सो मच हाफिज जी. और नेक्स्ट कॉलर हम लेंगे 03000 11348 के ऊपर. हेलो
2: हेलो
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से?
2: आदिमा कुर्बान अली खास के लिए बुलाया, गोटा जी गुलाम खास के लिए लगी झंडो भरिया.
0: कुर्बान भाई कौन सा प्रोग्राम सुन रहे हैं?
2: सुपर जी क्रीम जी टाउन का प्रोग्राम कहा?
0: सुपर वाइट बिल्कुल, सुपर वाइट के टाउन से प्रोग्राम सुन रहे हैं. प्रोग्राम कौन सा है?
2: जिंदगी गुलजार.
0: ओके जी, वेरी गुड, वेरी नाइस. मुझे बताएं कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे सुपर वाइट का, कब करेंगे, जल्दी से कर लें.
2: हाँ बिल्कुल, ऐसा सुपर वाइट वो इंशाल्लाह बाकी दिन में इस्तेमाल करना.
0: ओके जी, ठीक हो गया. और कुछ कहना चाहेंगे?
2: ये काठरी का गुलाम रसूल मरी अजीज सोलंगी काल कलाशारी अजीज जरवार अजीज सोलंगी का जेके बुधन पर सबने सलाम मोहब्बत जुड़ी सर का गुलाम रही बलोच चार्ली लुंडू सलाम मोहब्बत.
0: ओके जी, थैंक यू सो मच. कॉल हो चुकी है जी ड्रॉप, एंड हम करेंगे, हम चलेंगे आगे. ठीक है, आगे चलेंगे एंड हम नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करेंगे. द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. काफी दिन बाद ये सॉन्ग मैं प्ले करूंगी एंड उसको हम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स. ग्लो विद अस.

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
3: जरा बहन, जरा बात तो सुनो. हटो पीछे, भागो.
4: अहमद, हटो वहां से.
5: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले. सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं. इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं. करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें. महकमा सेहत, हुकूमत सिंध.
6: अब थोड़ा मी टाइम बनता है. हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम. अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है.
7: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
6: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है. तुम कौन सी यूज करती हो?
7: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है.
6: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम.
7: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी. And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
6: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
8: Super white!
9: लाड़काने वासे लाए खुशखबरी. डॉक्टर अजीत कुमार, MBBS, FCPS, डर्माटोलॉजी, चमड़ी जे बीमारियों जो माहिर. हिते मोहिड़ा, डड्र, मल्लो, पुरानी खारश, वारा चरो, पुरानो फट, चित्री, लैशमेनियासिस, चेहरे जा दाग, बग, नहन जो खराब थियण, वारन जा मसला, एलर्जी ऐं औरतुनि जे चेहरे ते गैर ज़रूरी वारन जो इलाज बेहतरीन नमूने कयो वञे थो. डॉक्टर अजीत कुमार, चमड़ी जे बीमारियों जो माहिर. एड्रेस अली हॉस्पिटल, बगड़ रोड, लाड़काणो. टाइम रोज़ानो शाम जो 4 बजे का रात जो 8 बजे तक,
10: आचर दे क्लिनिक बंद रहती.
9: वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 03124344689.
11: अजा गुलाब, तोखे त खबर आ, पाण वारो हनीफ घणी वक्त का बीमार आ. कपड़ा मेरा पातल पांजे मुंह वती तो गलाइंदो, ऐ पाण के त बीमार समझे ही कोन तो. को डस त दे, इलाज किथा करायास?
12: भाऊ जुमन, अच त तोखे डस ड्या. सोल मेंटल हेल्थ लाड़काने वारा माहिरे नफ्सियात जी निगरानी में इलाज भी मुफ्त था कन. सो भी घर वेठे ऐ हिक फोन करण सा.
13: लाड़काने वासे लाए खुशखबरी. शा तमाजे घर या पाड़े में को एड़ो मरीज आहे जें जी सोच ऐ रवैये में तब्दीली आई हुजे. मिसाल जेको पान के बीमार न समझे.
14: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में. डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
15: ऐ बेरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज ऐ डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहे में आहिन 4 रंग जो खूबियों ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐ 4 रंग जो खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस ऐ झुरन के घट कन ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ 3 दिन में. जिल्द के बढ़ाए नरम, मुलायम ऐ ब्राइट. उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैं जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती. हर भी रहो ब्यूटीफुल. सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
16: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा.
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

टेंशन वाली बात नहीं है। तो सर से लगे पांव तक खूबसूरती आपका मुकद्दर बन जाएगी अगर आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। ऑन द वेरी सीरियस नोट, इसके अलावा जो इनका बूस्टर आता है सुपर वाइट ब्यूटी सीरम बूस्टर, इसको आप सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं, आप इसको सुपर वाइट राइस ब्यूटी क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं, आप इसको सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्ने क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सुपर वाइट टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं, इसको सुपर वाइट स्ट्रॉबेरी कोरियन फार्मूला ब्यूटी क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं। मकसद ये कहने का कि आप सुपर वाइट का कोई भी मतलब इसकी कोई भी ब्यूटी क्रीम आप यूज कर रहे हो, आप इसका कोई भी बूस्टर उसकी क्रीम में मिक्स करके ऐड कर सकते हैं, आपको जिस तरह रिजल्ट्स चाहिए। लाइक अगर आपको कोरियन ग्लास स्किन चाहिए तो आप फिर या तो स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम यूज करेंगे सुपर वाइट वालों की, या फिर सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी सोप नहीं सॉरी ब्यूटी क्रीम यूज करेंगे और उसमें फिर बूस्टर को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो फिर ये है कि कोरियन ग्लास स्किन आपको मिल जाएगी, इस तरीके से आप इस बूस्टर को यूज कर सकते हैं अपनी क्रीम्स में ऐड करने के बाद। अगर आप ऑयल फ्री स्किन चाहते हैं, सुपर वाइट ऑयल फ्री स्किन के अंदर मिक्स कर सकते हैं इसको सुपर वाइट ब्यूटी सीरम को या फिर सुपर वाइट राइस ब्यूटी सीरम को। इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हैं और इतने जबरदस्त प्रोडक्ट जब आपको मिलेंगे, जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, आप कहेंगे वाकई जो मैं कुछ बता रही हूँ उससे कई ज्यादा हकीकत में इसके रिजल्ट्स हैं, बहुत खूबसूरत। कॉल कर सकते हैं आप लोग, मुझे कॉल कीजिए 03000113।

इतनी ब्यूटीफुल सॉन्ग और सॉन्ग के साथ साथ हम चलते हैं जी आगे 03000113488 के ऊपर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के साथ साथ वो तमाम तो लोग जो कि डेली बेसिस पर कॉल कर रहे हैं वो कॉल नहीं करेंगे, जिन लोगों ने कभी कभार कॉल मिलाई हो वो कॉल कर लेंगे, ठीक है, तो ये करेंगे आप सब. एंड गाना हम नेक्स्ट प्ले करने जा रहे हैं तो नेक्स्ट गाना भी हमने प्ले कर दिया है, बाय अब्रारुल हक. साथ साथ कमेंट्स को एंटरटेन करते हैं जी. अच्छा, हमें कमेंट किया है फरवा गुल ने. फरवा गुल लिखती है कि शो बड़ा जबरदस्त सुपर डुपर है, ब्यूटीफुल है. सुपर डुपर क्यों नहीं होगा, सुपर वाइट के ताउन से है तो सुपर वाइट के ताउन से होने वाला शो सुपर डुपर होगा. अच्छा, फरवा गुल कहती है गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे. आपको न्यू शो में आपको

0: कॉलर मौजूद है मेरे साथ लाइन पे। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? पहली दफा कॉल कर रहे हैं भाई
1: जी?
0: पहली दफा कॉल कर रहे हैं? ओके, केड़ो प्रोग्राम बुधो था?
1: जिंदगी गुड़गा जो
0: कहंजे ता मुन सा
1: यो नौ को तम या क्रीम जो सर भाई
0: बिल्कुल यो यो नौ प्रोडक्ट तहां जे लाए असा वठी आया आयो
1: वठी आ रे ता समझ गए
0: ता तहा नालो त खड़ी दिखा रियो नौ प्रोडक्ट सुपर वाइट नालो आ छानालो सुपर वाइट सुपर वाइट कदे यूज कंदो
1: यो इंशाल्लाह
0: ओके जरूर यूज कयो यूज करे असा के जरूर बुधायो
1: ठीक है
0: बियो कुछ चवण चाहिंदो
1: ये चमन मीरा जी कान बुधायो तो पियानो न मोकला ने कई कदे जा काप जाता
0: ओके जरूर तमा के बुधराइंदा थैंक यू सो मच पेंजो ख्याल रख जो अल्लाह हाफिज। आज काफी दिन बाद मैं सिंधी बोल रही हूँ और माशाल्लाह काफी अच्छी बोल रही हूँ। अच्छा हाँ, मैं सोच रही थी कि मैंने एक गाना प्ले नहीं किया, मतलब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम ये गाना प्ले करेंगे शो में एंड द सॉन्ग कॉल्ड पैब्लो।

0: जो डर गया समझो मर गया, इनका सामना करो, तुम आगे बढ़ती रहो और इन्हें
1: नेक्स्ट लाइन पहुंचोगे। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन कहां से? अयाज अली भुट्टो भाई, कैसे ठीक ठाक हैं? प्रोग्राम सुन रहे हैं, कौन सा है?
2: सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम।
1: सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम कब यूज कर रहे हैं? ओके, जरूर करें, बस सुपर वाइट होना चाहिए। अच्छा और कुछ कहेंगे?
2: राशिद भुट्टो,
1: अच्छा सलाम दे रहे हैं। ओके ओके ओके, खत्म हो गए। ओके ओके जी, ये एक एक मिनट का गैप लेके ना दोस्तों को शामिल करने से बेहतर है जल्दी जल्दी बोला गया। वैसे ये सलाम दुआ देने का जो ये ट्रेंड है ना, ये काफी पुराना हो चुका है, तो कोशिश किया करें कि कुछ प्रोडक्टिव बात किया करें, ठीक है? बहुत कम लोगों को कॉल पे आने का मौका मिलता है, तो इस मीडियम पे आके इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया करें, कोई अच्छी प्रोडक्टिव बात किया करें, ठीक है? जो कभी किसी ने ना की हो। और इसके अलावा जी आगे चलते हैं, कमेंट्स और मैसेजेस मुझे रिसीव होते जा रहे हैं, और कमेंट्स और मैसेजेस, और साथ में हम फिर से गाना चेंज करने का सोचेंगे नहीं बल्कि करेंगे, एंड हम गाना प्ले करेंगे। मेरे ख्याल से लास्ट में हम एक ही गाना प्ले कर सकते हैं, और मेरे जाने का वक्त भी जो है ना करीब आ रहा है।

रोज़ी का नाम जो दुश्मनी ऐसा नहीं हो दिया तो प्लस में ऐसा सरिया हम जगह बार रोड देखा बार नकाय हुआ ऐसा कुल में संभाल लिया है कुल में ना कर कुल में संभाल बुआ है तो ऐसा जब तो कभी ना कभी

हथियारनि जी दुकान ते फायरिंग, पंज ॼणा क़तल। मारिजी वियलनि में पीउ ऐं संदसि ॿ पुट शामिल आहिनि। फोतियुनि में रजब घांगरो, संदसि ॿ पुट रियाज़ ऐं कुर्बान घांगरो शामिल आहिनि। बिलावल घांगरो ऐं वाटेड़ो अब्दुल्ला बिरोही बि गोलियुनि जो खाज बणिजी विया आहिनि। पुलिस जो चवणु आहे त घांगरा बिरादरी जो मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि सां तकरार हलंदड़ आहे। घांगरा बिरादरी जे मारिजी वियल चइनि ॼणनि जो तालुक रतोदेरो भरसां ॻोठ वदापुर सां आहे। मक़तूल पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि। वधीक जांच जारी आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं केपीके ऐं बलोचिस्तान में कार्रवाइयूं, 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियुनि मूजिबि ॾखण वज़ीरिस्तान में ख़ारिजी दहशतगर्दनि जे ताक़नि खे निशानो बणायो वियो, जंहिं दौरान 5 दहशतगर्द मारिजी विया। बलोचिस्तान जे माशकेल में पुलिस चौकीअ ते हमले बाद फ़रार थींदड़ 6 दहशतगर्द मारिजी विया। हुकूमत ऐं अपोज़िशन में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर अॼु शुरू थींदो। ज़रियनि मूजिबि अपोज़िशन पंहिंजा मुतालबा हुकूमत खे पेश करे छॾिया आहिनि। पीटीआई बानी जे इस्पताल मुंतकिले जे अदालती फ़ैसिले ते अमल करण जो मुतालबो। हुकूमत अपोज़िशन खां लॉन्ग मार्च मुलतवी या ख़तमु करण जो मुतालबो कयो। अदालती फ़ैसिले ते अमल दरामद जी ख़ातिरी बि कराई। ईरान सऊदी अरब ते हमला कंदड़ यमनी हुसैन खां लातालुकी ज़ाहिर करे छॾी। ईरानी परॾेही वज़ीर हुसैन ते हमला करण बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾेई छॾी। परॾेही मीडिया मूजिबि ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राबची हुसैन जे विच ओभर में अरब मुल्कनि ते हमलनि खां लातालुकी ज़ाहिर कंदे हमलनि बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾिनी आहे। खैरपुर में डिस्ट्रिक्ट बार पारां सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ रैली। वकीलनि सिंध ख़िलाफ़ साज़िशनि खे रद्द कंदे साज़िशूं रद्द करण जो मुतालबो करे छॾियो आहे। अॻवाननि चयो आहे त सिंध जे वहदत ते कंहिं बि क़िस्म जो समझौतो न कयो वेंदो। सिंध खे इंतिज़ामी बुनियादनि ते विरहाइण वारनि मनसूबनि खे रद्द कयूं था।

आ गुज़िरियल ॾींहं ॻोठ वरियाम जतोई में ऑपरेशन दौरान शाहबेग पुट लश्करी जतोई मारिजी वियो हो। पुलिस हदबंदीअ जो जवाबु ॼाणाए पोस्टमार्टम लाइ लेटर जारी न कयो। वारिस औरतूं लाश बिना पोस्टमार्टम जे खणाए वियूं। गंबट में टे ॾींहं अॻु आरिजा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़े दौरान क़तल थियल नौजवान जे वारसनि जो एहतजाज। मक़तूल अजीब आरिजो जे अमड़ ॿियनि औरतुनि सां गॾिजी पाक किताब खणी एहतजाज कयो। औरत चयो त मुंहिंजे पुट खे नौकिरी ॾियारण जे बहाने कातिलनि 5 लख वरिता ऐं पैसा वापसि घुरण ते नौजवान खे क़तल कयो वियो। जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि।

पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाधि ख़िलाफ़ अवाम सरापा एहतजाज। रादड़ में चिंची रक्षा हलाईंदड़नि रैली कढी धरणो हयो। ओडेरो लाल विलेज में पेट्रोल जे वधंदड़ अघनि ख़िलाफ़ चिंची ड्राइवरनि पारां एहतजाज कयो वियो। मुज़ाहिरनि चयो आहे त पेट्रोलियम शयुनि अघनि में लाॻीतो वाधि सबबि असांजे रोज़गार सख़्त मुतासिर थी रहिया आहिनि। तेल सस्तो कयो वञे। पनो आकिल भरसां पाणी जी ढंड में माल जो वापारी ॿुॾी फोत। ॻोठ वरियाम जतोई में 60 वरियनि जो माल जो वापारी साईंदास जतोई पाणी जी ढंड में ॿुॾी फोत थी वियो। ॿिनि कलाकनि जी गोलाबाद ॻोठाणनि पारां पाणी मां साईंदास जतोई जो लाशत कयो। जमाल शाह भरसां बारड़ो अहमद ज़रदारी वाटर कोर्स में ॿुॾी फोत थी वियो आहे। वारसनि मूजिबि ॾींगर मिर्गीअ जो मरीज़ हो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में A product by अक्सा Cosmetics पाकिस्तान
2: Finally, अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
4: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
5: सुपर वाइट
6: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

पशुओं के संबंध है जहाँ की बारिश उलासवल खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नींद से जाकर समय से आसमान तक जिंदगी से मौत तक जहाँ से तौर दकम से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साय में सलामत रखे सो आमीन या रब्बल आलमीन। आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन नेहरा पर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें होने वाली है और जनाब बातें करेंगे आप लोगों के साथ आप लोगों की खूबसूरती के हिसाब से बातें करेंगे आप लोगों के साथ आप लोगों के हुसन के हिसाब से बातें होंगी आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा वाली जो कि आप चाहते हैं कि प्रोग्राम में अंदर और इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं तो तमाम लोगों को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और इसी के साथ साथ अपना भी तारीफ करवाते हैं सो लिसनर्स फॉर रीजन टेक द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर RJ एंड योर DJ सिद्रा मुस्कान नाम तो सुना ही होगा तो बिल्कुल आपके सिद्रा आपके साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाएंगे और वो कैसे ब्यूटीफुल बनाएंगे क्योंकि आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है एंड डी स्किन फेस वॉश है ये दोनों प्रोडक्ट्स मार्केट में इन है अगर आप परचेज करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं वैसे भी कहते हैं ना खूबसूरती के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं बनता अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारे चेहरे पर निखार होना चाहिए खूबसूरती हमें वो वाली मिले जो कि हम हमेशा से हासिल करना चाहते हैं तो जब आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट मौजूद है जो आपकी खूबसूरती में इजाफा लाने वाला है आपके चेहरे को चमकाने वाला है और आप लोगों की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला है तो भाई कौन सी बात है जो आपको रोक रही है कौन सी चीज है जो आपको डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज करने से रोके जा रही है आप जल्दी से अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को परचेज करते जाइए और इसके अलावा अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाते हैं और वहां से आपको ये मालूम पड़ता है कि भाई हमारे एरिया में तो अवेलेबल नहीं है अभी तक डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो उसके लिए आप लोगों को बताया जाएगा कि आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कैसे करा सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वाली बातें हैं इस प्रोग्राम में आप लोगों के फायदे के मुताबिक यानी कि आप लोगों को बताया जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के क्या क्या फायदे हैं और उसके साथ साथ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप किस तरह से अवेलेबल करा सकते हैं किस तरह से आपकी खूबसूरती में इजाफा लाने वाले और किस तरह से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश से आप फायदा उठा सकते हैं वैसे भी दुनिया में आजकल जितने भी लोग मौजूद हैं वो सारे लोग बस फायदा उठाने के चक्करों में है अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं लेकिन कोई हाँ जी इस तरह का फायदा ना उठाएं जैसे अगले इंसान को नुकसान हो जाए लेकिन हाँ फायदा वो वाला उठाएं जैसे आपको भी फायदा हो अगले इंसान को भी फायदा हो लेकिन यहाँ पर आपकी खूबसूरती की बात हो रही है तो भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे पर सिर्फ फायदा ही फायदा होने वाला है आपके चेहरे पर जितने प्रॉब्लम है वो सारे दूर हो जाएंगे आपके चेहरे पर रिंकल्स हैं फ्रेकल्स हैं क्रेकल्स हैं ये तमाम चीजें भी खत्म हो जाएंगी आपको मिलेगी वो ताजगी भरी निखार और खूबसूरती जैसे आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे तो हमारे साथ मौजूद रहिएगा प्रोग्राम में यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं हाँ जी अपने काम कर रहे हैं या फिर फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे तमाम तो सुनने वाली समातों को वेलकम करने के साथ साथ जी बिल्कुल प्रोग्राम में आपका हमारा साथ जो है वो पूरी पूरी 3 बजे तक का होने वाला है 3 बजे तक आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे प्रोग्राम में फंड होगा प्रोग्राम में बातें होंगी प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट होने वाला है और आप लोगों को सुनाया जाएगा बड़ा जबरदस्त सा म्यूजिक कलेक्शन भी तो रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मजे करने के लिए और ये जो 2 घंटों की लॉन्ग ड्राइव होती है इसमें हमारे साथ मौजूद रहने के लिए तो अगर आप हमारे साथ मौजूद है जरूर से हमें बताएं कहां से और कौन हमारे साथ है और तरीकेकार क्या होने वाले प्रोग्राम में शामिल होंगे वो बिल्कुल आप लोगों को बताए जाएंगे लेकिन ऐसा करते हैं सबसे पहले आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं आगे से प्रोग्राम करते हैं आगे से प्रोग्राम करने के फौरन बाद ही जैसे हम आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो आप लोगों को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है सो आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए आप भी खूबसूरत हो जाए क्योंकि खूबसूरती पर आपका भी हक है और ये आप डिजर्व करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।

0: क्या बातें, बहुत ही खूबसूरत सी नाच जो है आपने यहाँ पर सुनी, और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चे होते हैं जनाब, थोड़े से तो आपके खर्चे कराए ना, ऐसे कैसे चलेगा। अगर आप भी थोड़े से खर्चे करना चाहते हैं और खर्चे भी वो वाले बाबा चाहना है ना, वो खर्चे कहो जेको सजायो वञे छो त कई बार दफ़ा ईअं थींदो आहे असां खोड़ सारा अहिड़ा ख़र्च करे वेंदा आहियूं जेके अजाया थी वेंदा आहिनि। ऐं जॾहिं ब्यूटी प्रोडक्ट जी ॻाल्हि ईंदी आहे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में खोड़ सारा प्रोडक्ट अहिड़ा असां इस्तेमालु करणु स्टार्ट कंदा आहियूं जेके भई नालो त वॾो हूंदो आहे पर दर्शन छोटा हूंदा आहिनि, ॿुधो अथव न। सो बिल्कुलु वेसी, अगरि तव्हां बि कोई अहिड़ो प्रोडक्ट यूज़ करे रहिया आहियो त तव्हांखे रिज़ल्ट सफ़ा ज़ीरो मिली रहियो आहे, उल्टो तव्हांजे चहिरे जी स्किन ख़राब थी वई आहे, त तव्हांखे छा करिणो आहे, तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु करिणो आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में तव्हांखे बिल्कुलु भरपूर पूरे प्रोग्राम में ॿुधायो वेंदो। ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तव्हां कीअं किथां परचेस करे सघो था या वरी पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सघो था, इहो बि बिल्कुलु तव्हांखे ॿुधायो वेंदो। पर अॼु जे प्रोग्राम जो टॉपिक छा आहे, इहो सभ खां पहिरियों तव्हांखे ॿुधायूं। ओके जी, तो आज के प्रोग्राम में जो सवाल होने वाला है वो जरा गौर से सुनिएगा, ऐसा ना फिर बोलेंगे भाई हमने तो सुना ही नहीं, समझ ही नहीं आया सवाल। सवाल जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, और इस तरह के आप मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई वजन नहीं मगर उसको 20 लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते। हाँ जी, ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई वजन नहीं लेकिन फिर भी उसको 20 लोग मिलकर भी नहीं उठा पाते। हाँ जी, ये क्या हो सकता है आप मुझे बताइए। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामली प्रोग्राम लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनने वाले हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज। अगर आप हमारे पेज पर आते हैं तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। बिल्कुल ही, तो मेरी आवाज जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज धक्के खा रही है, सब लोग मुझे बताएं कि कहाँ कहाँ से आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं, जरा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और मुझे बताइए कि वो क्या चीज है जिसका कोई वजन नहीं लेकिन 20 लोग मिलकर भी उसे नहीं उठा पाते। हाँ जी भाई साहब, और जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। अगर आप भी चाहते कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराने के लिए आपको जो नंबर बताऊंगी ना उनके ऊपर आपने बस रब्ता करना होता है। नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल हो जाए, या फिर ऐसा वाला सीन है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो मिलती है लेकिन डी स्किन का फेस वॉश नहीं मिल रहा, तो वो भी आप अवेलेबल करा सकते हैं। बस नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए, और नंबर होने वाले हैं जनाब 0332738439, बड़ी 332 है 73 84 309, नंबर आए 03125025907, बड़ी 312 50 25 970। ही नंबर सां जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए सघो था। सो अवेलेबल करायो, ऐं बाबा तारिक भाई बि असांजी पोस्ट ते वेठो अथव, तारिक भाई तव्हांजे लाइ जेको आहे न अवेलेबल कराए छॾींदो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश, बसि तव्हां तारिक भाई खे हिकिड़ी फोन त हणो। तारिक भाई चवंदो असां ताबेदार। डी स्किन ब्यूटी क्रीम हाज़िर बाबा, अवेलेबल कराए छॾियूं था, त न तव्हांजे एरिया में ना ही अवेलेबल थी त बाबा ॿुधायो नी, ॿुधाईंदा न त ख़बर कीअं पवंदी त तव्हांजे एरिया में डी स्किन ब्यूटी क्रीम अञा कोन मिले थी, ऐं मिले नथी त ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे तव्हां इस्तेमालु बि न कंदा हूंदा। सो इस्तेमालु कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स खे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराईंदा रहो। अच्छा किंज़ा यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं। आप अपनी अम्मी के साथ मिलकर हमारा प्रोग्राम सुनती हैं, बहुत शुक्रिया। अबू हनीफ अल बलोची हमें सुन रहे हैं, गुड आफ्टरनून असिद्रा मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। अच्छा अली रिना भाई कश्मीर से हमारे साथ मौजूद है, भाई को वेलकम हो गया। फरवा गुल कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, लव यू विद द बेस्ट विशेस, टेक केयर। आप ही अभी आपकी तबीयत कैसी? मेरी तबीयत ठीक है जी, आप बताएं आप कैसी हैं। कहती हैं कि आप ही अर्ज किया है, रेजा रेजा ही ख्वाब मेरी आंखों में, कैसे कह दूं कि गम नहीं होता, कोई शिकवा नहीं मगर मोला, क्या करूं दर्द कम नहीं होता। अल्लाह साईं तव्हांजो दर्द घट करे छॾींदो बाबा, अल्लाह खां दुआ घुरो। और फकीर शाह शेख हमारे साथ मौजूद है जी, लाड़काना से आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। जैन अली लिखते हैं कि खूबसूरत है चांद भी मगर वो जमीन जादी अलग ही मयार रखती है, फॉर यू सिडो, थैंक यू वेरी मच जैन। और लिखते हैं कि कोई मिले तो यूं मिले कि वो मिले तो सुकून मिले, आए हाय। और आपका डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा यहाँ पर हमारे साथ फरवा की दी, यहाँ पे गाना बिल्कुल आपके लिए लगाते हैं। और
1: फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन नमी के लॉक करे चामरन जो खूबियो जल्द में फाइन लाइन एंड झुरन के घट कर रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन दिन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ब्राइट गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

हर मर्ज़ जी दवा आहे, लेकिन जेको इश्क जो मरीज़ आहे उनजी दवा ई कान्हे। ऐं उनखे तबीब यानी डॉक्टर तड़े कढी छॾियो, तुंहिंजी दवा असां वटि न आहे। भिड़ाई फरमाए थो तड़े तबीब लॻ

भेटाई साईं डॉक्टर सां वेज सां हकीम सां दाए सां मुखातिब थी चे तो ए वेज ए डॉक्टर मुख्य दवा न दे मां मर बीमार हो जा इन बहाने मुखा पहजो महबूब पुछण छे सरकार फरमाइन था।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहराब और मातली, नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों के साथ बातें होती हैं जनाब, और क्यों ना हो, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और फायदेमंद मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि भाई मार्केट में आपने बहुत सारे प्रोडक्ट लगाकर देखे हैं, लेकिन जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे तो ये फायदा तो आप लोगों को मिलने वाला है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे पर जो खूबसूरती आपको देने वाली है, आपके चेहरे पर जो खूबसूरती आने वाली है, लाने वाली है, वो हमेशा आपके चेहरे पर बरकरार रखने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे या फिर हम कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, भाई आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि भाई आपकी जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं ना, वो आपसे कहीं गायब हो जाते, दूर हो जाते, और आपकी जो स्किन है वो खराब होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते। लेकिन इस मामले में ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, तो कोई भी आपकी स्किन के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। इनफैक्ट आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती रहेगी और आप हमेशा खूबसूरत बने रहेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश आप लोगों के लिए अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप जाते हैं परचेज करने तो आप इजीली जाइए, परचेज कीजिए। अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो उसके लिए आपको नंबर जो बता रही हूँ उनके ऊपर रब्ता जरूर किया करें, ताकि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल करा सके। उनके अलावा अगर तुम्हें चाहिए था बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम असा इस्तेमाल करना चाहूँ था, पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कड़ा फायदा है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम फायदा अगर माइते गण वे हैं तो बाबा रात थी वेंदी, पर चलो थोड़ा घना तांके बुधाए छड़ियां दी चाय याद करना। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये चीजें जो है ना, बेसिक सी मालूमात आप लोगों को मैं बता रही हूँ। अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो भाई जान डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना, सबसे पहली बात आप लोगों को जो बताने वाली वो ये कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। यानी कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि भाई ये फलां प्रोडक्ट लगाने से कहीं हमारी स्किन तो खराब नहीं हो सकती। नहीं हो सकती बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड वाइटनिंग फार्मूला है। मेडिकेटेड जो फार्मूला होता है ना, वो ऐसा होता है कि भाई उसे डॉक्टर्स ने बनाया होता है। तो ये घबराने वाली बात तो जरा साइड पर रख दीजिए कि भाई हमारी स्किन सेंसिटिव है तो हम नहीं लगा पाते हैं। आप हर स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर तरह की स्किन के ऊपर आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज किया जा सकता है। और बात आती है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर क्या चीजें ऐड की गई हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा आरबुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है। ये तमाम चीजें जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ऐड की गई है। और जैसे हम आप लोगों के साथ जिक्र करते हैं भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का, तो ये चीज भी आप जरा याद रखा करें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को फेशियल जैसा रिजल्ट मिलता है। यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक 2-in-1 फार्मूला है। ये नाइट क्रीम तो है ही है, वाइटनिंग फार्मूला तो है ही है, लेकिन ये एक फेशियल वाला इफेक्ट आपके चेहरे पर लाने वाला प्रोडक्ट भी है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम इस्तेमाल करेंगे तो इसे वाकई फेशियल वाला रिजल्ट आएगा, तो बिल्कुल आपको फेशियल वाला रिजल्ट आएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स की एडिशन की गई है ना, बिल्कुल यही चीजें आपके चेहरे पर जो है वो फेशियल वाला इफेक्ट लाने वाली है। क्योंकि विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स जो हैं, ये महंगे महंगे फेशियल्स के अंदर ऐड की जाती हैं। तो भाई आप भी लकी हैं कि आपके पास कोई ऐसा फाइनली प्रोडक्ट मौजूद है जो आपकी खूबसूरती के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, और साथ ही साथ आपको इस तरह के रिजल्ट्स देने वाला है जो कि आप कहीं शायद किसी और प्रोडक्ट से हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके घरों में शादियां हो रही हैं या फिर आपकी अपनी शादी हो रही है, तो आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। सिर्फ और सिर्फ 2 रातों में आपको परफेक्ट वाला रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। 2-in-1 फार्मूला, मेडिकेटेड फार्मूला, भाई और क्या चाहिए आप लोगों को, ना शुक्रो। इतना अच्छा, इतना माल का प्रोडक्ट आपको बताया जा रहा है। और खूबसूरती तो हर किसी की ख्वाहिश होती है ना, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ अपनी जिल्द का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ऐसा मैं आप लोगों को इसलिए कहती हूँ क्योंकि भाई बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो सिर्फ क्रीमें लगा रहे होते हैं। क्रीमें लगाना इनफ नहीं होता, आप लोगों को चाहिए कि आप जो है ना अच्छा सा फेस वॉश भी लगाएं अपने चेहरे के ऊपर। अगर आपके पास डी स्किन का फेस वॉश मौजूद है तब तो भाई क्या ही बात बन जाएगी, क्योंकि डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है। अगर
अगर आप परचेज करने जाते हैं तो आपको आराम से मिल जाता है। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ये आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने कामों की वजह से प्रॉपर अपना और अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख पाते, तो अगर आप अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं, आप काम में इतने मसरूफ हैं, तो बस आप डी स्किन का फेस वॉश अप्लाई कर लीजिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम अप्लाई कर लीजिए। ये दोनों चीजें इनफ है भाई आपकी ब्यूटी केयर में इजाफा लाने के लिए, आपकी खूबसूरती को। जब आप इन दोनों प्रोडक्ट्स का यूज करते रहेंगे ना तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वाकई आप कितना अच्छा और कितना जबरदस्त प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भी बात है जनाब कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना और डी स्किन फेस वॉश, ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। तो इतने जबरदस्त इतने कमाल के प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद है, तो मैं तो चाहूंगी कि भाई जल्दी से जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से और परचेज कराइए, और इसी के साथ साथ खूबसूरत होते जाइए, क्योंकि खूबसूरती के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज, और इस्तेमाल करते रहिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लोग हमारे खूबसूरत से प्रोग्राम का हिस्सा हैं। पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए। आज भला मुझे आप लोगों की रश कम क्यों नजर आ रही है, जल्दी जल्दी से प्रोग्राम पर जो है ना वो हल्ला बोलिए और जरा जी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। जब आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते हैं ना तो ये फायदा हो जाता है कि भाई हमारी पोस्ट बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाती है और बहुत ज्यादा लोगों को हम इजीली बता पाते हैं कि वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से फायदा उठाइए और हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाइए। उनके अलावा हमारे पास ही आप लोगों के मैसेजेस हैं, तो यहाँ पर चाचा खालिद कहते हैं, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाना डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही सही। ये क्या था चाचा, चलिए आपको वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया के साथ। और हमारे साथ फहीम भाई मौजूद है, कहते हैं तू आर थी अचे थी अई पार थी बने थी, तू आर थी अचे थी अई पार थी बने थी, तू वहां ते किरे थी अई बार थी बने थी। फहीम शेख लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम याली मदद अदा केड़ा हाल आहिन सफा बल्ली, टॉपिक जो जवाब दिनो आहे ओके। अच्छा अलीशा लिखती है कि जिंदगी ये है कि तुम सामने रहो ताकि मैं जो ताकि मैं जी सकूं। अच्छा सही सही सही सही सही, हाँ भाई पसंदीदा इंसान की बात ही कुछ और होती है। और चाचा कहते हैं कि क्यों धिक्के खा रही है आपकी आवाज, आपकी आवाज ही तो है जो सहर तारी करती है बेटा सिड्डू अल्लाह जाए वदा मनवा दिल जाए कया ना। और किशोर भाई आपने टॉपिक का जवाब दे दिया, क्या बात है जी, बढ़िया हो गया। और उनके अलावा फहीम भाई कहते हैं अदा आज लगे तो अमा के जुकाम आए, हाँ थोड़ा थोड़ा मुखे भी महसूस थे तो ये आवाज थोड़ी अजीब आए मुझे, कोई बात नहीं है जी आप गुजारा कर लीजिएगा। और ये फर्ज मोहम्मद फर्ज राहिब अली खोसू भाई हमारे साथ है, फर्ज राहिब अली खोसू भाई वालेकुम अस्सलाम, आपको भी वेलकम कहते हैं। और किशोर भाई कहते हैं अदा एकड़ो सॉन्ग आए पितकड़ो गानो बिल्कुल तांजी फरमाइश ते हलायो विंदो आई तवा पांजी सीट ते बैठा हो जो। परवा कहते हैं कि आप डीपी देखकर भी नहीं समझे कोई, अच्छा ओके जी ओके। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी दोनों आंखें खोलकर बैठना पड़ेगा चले दोनों आंखें खोलकर बैठते हैं। अबू हनीफ अल बलूची हमें सुन रहे हैं कि कहते हैं कि लोगों ने मांगा रोज खुदा से कुछ नया, एक हम तुझे एक हम थे कि तेरे ख्याल से आगे ना जा सके, आंसर है आपने दिया है जवाब जी ओके हो गया। और फरवा आपने भी टॉपिक का जवाब दे दिया, ये भी ठीक है जी। इकबाल लाशारी हमें सुन रहे हैं, विलेट सोनो खान लाशारी मेरे पर खास से कहते भाजी सिद्रा टॉपिक पानी ओके ओके ओके आगे नहीं पढ़ेंगे वरना लोग जान जाएंगे कि आज के सवाल का जवाब क्या है। और आज जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है तो सवाल ये पूछा है कि आप मुझे बताएंगे वो क्या चीज है जिसका कोई वजन तो नहीं लेकिन फिर भी उसे 20 लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते। हाँ जी बिल्कुल, आप मुझे ये जरा इस सवाल का जवाब बताइए। मैं आप लोगों को एक गाना सुनाती हूँ, बड़ा ही अच्छा जबरदस्त सा गाना है, गाना सुनते और गाना सुनते सुनते आप लोगों के साथ बातें करते रहेंगे और आप लोगों को बताएंगे जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जो कि आप इस्तेमाल कर रहे ही नहीं बताइए ना मुझे, और आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिल रहे ही नहीं ये भी बताइए ना मुझे।

हाँ जी, इतना भी रूठना सही नहीं होता। वैसे ये चीज मैंने कहीं पर पढ़ी थी कि औरत जो होती ना, वो मतलब ऐसा होता है कि बार बार रूठ जाती है, और इस वजह से रूठ जाती है कि अगला इंसान मुझे मनाएगा, लेकिन जब वो रूठती है ना तो वो अपनी अहमियत खो देती है। क्योंकि इस तरह की जो औरतें होती ना, वो जो बात बात पर रूठ जाती हैं, ज्यादा रूठ जाती हैं, वो अपनी अहमियत ही खो देती हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाए तो भाई ऐसा इंसान किसी को भी पसंद नहीं आता जो बात बात पर रूठ जाए। तो ज्यादा रूठना, चाहे औरत हो या मर्द हो, किसी पर भी सूट नहीं करता। तो मत रूठा करें और खास करके भाई अपने पसंदीदा इंसान से। हाय, वही इसी बात पर एक और बात भी याद आ गई कि भाई मुझे ये लगता है कि इंसान के किरदार की बस सिर्फ दो ही मंजिलें होती है, या तो वो दिल में उतर जाता है या तो वो दिल से उतर जाता है। मुझे और चीजों के बारे में पता ही नहीं। या तो एक इंसान दिल में उतर सकता है या तो फिर दिल से उतर सकता है। आप बताएं आपको क्या लगता है। हाँ जी, भले रुसे रुसन वाला मानो वैसे भी थोड़ा घट वर्णदा है। वासु भाई कहते हैं कि मुझे प्यारी अदी सलाम वालेकुम अस्सलाम और लेडी सलाम मदद कीड़ा हाल है सबा खुश आयु सब मजे में तहा पांजा हाल हवाल दियो। और तारिक भाई लिखते हैं कि सजाद अली रुस्तमानी मातली से अच्छी कस्टमरी हमारे डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज कर रहे हैं। क्या बात है भाई, सजाद अली रुस्तमानी भाई मातली से हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपको। वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं जनाब, ऐसे ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते रहिए। और यकीनन आपको अंदाजा हो चुका होगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जो इस्तेमाल है वो क्या ही कमाल का है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले लोग जो है ना, वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास अब ऐसा प्रोडक्ट आ चुका है जिसके इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपके चेहरे पर जितने मसाले वो सारे दूर हो जाते हैं, आपको मिलती है खूबसूरती, आप हो जाते हैं हसीन, और लोग आपसे पूछते हैं बताएं तो ये क्या कमाल है कि आप इतनी खूबसूरत होते जा रहे हैं, दिन ब दिन आप जवान दिखते जा रहे हैं, आपके चेहरे के रिंकल्स, फ्रेकल्स, क्रेकल्स, ये सब चीजें खत्म होती जा रही हैं। तो आप उन्हें बताइए कि जनाब की ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का। अगर आप नहीं बता रहे तो उन्हें हमारे प्रोग्राम का एड्रेस बता दीजिए। वो हमारा प्रोग्राम सुनेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लगाए रहे या फिर नहीं, वो भी अब अवेलेबल हो चुका है। तो अगर आपके एरिया में रहता है तो जल्दी से अवेलेबल कराइए, नंबर्स के ऊपर रابطہ करते रहिए और परचेज करते जाइए, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। और यहाँ पर हमारे साथ हैं जी अली रज़ा लगारी भाई, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? शो तमाम नाइस है, सॉन्ग कल शाम धारे मां दिसां थी तमा जा गाना मुखे मिली वया या लिस्ट में बची वई जगह तमा जला बिल्कुल हलाए वठना से। आई क्या कहते हैं कि डेडिकेट टू अजहर लगारी, आकिब लगारी, आसिम लगारी, अनवर लगारी, अब्बास लगारी, मजहर लगारी, आरजे गुलाम मुस्तफा टालपुर, इमाम बख्श खोखर, अल्लाह बचायो मकसूद अली लगारी। ओके जी, सब भाइयों को वेलकम हो गया। और मोहम्मद जमान भाई कहते हैं गुड आफ्टरनून बुआ जी, हम भी आए हुए हैं इस प्यारी सी महफिल में आपकी स्वीट सी वॉइस से लुत्फ अंदोज होने के लिए। अच्छा, मेरे को लगा पता नहीं क्या लिखा है। वेलकम कहते हैं प्यारे भाई को। वासु भाई कहते हैं दी सिडो प्रोग्राम जबरदस्त चलता पाई, थैंक यू प्यारा भा। परवा कहती है कि आप ही, हाँ हाँ मुझे पता चल गया,

क्या बात है जी, जरा आ राहों में मेरी, उसको बताना चाहता होगा कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप भी लगा लीजिए। और चाचा कहते हैं कि हाइलोरोनिक क्या है, हाइलोरोनिक एसिड सीरम है, एक सीरम होता है, और जैसे सीरम साहब की स्किन के लिए जरूरी होते हैं ना, जैसे विटामिंस के सीरम होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक हाइलोरोनिक एसिड सीरम है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इफेक्टिव है। तो वो आपके लिए हमने डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश के अंदर एड कर लिया है, आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है और है भी, सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्द हजरात खवातीन, तो आप ट्राई करके देखिएगा। और फरवा आपकी पसंद का गाना लगाते हैं जी, आप हमारे साथ जरा बनी रहिए। और मोहम्मद जमान भाई कहते हैं अच्छा हुआ रश कम है, आज हम गरीबों की पसंद भी चलेगी, गाना तो बताएं कौन सा।

ने तो मुस्कुराकर हर दर्द छुपा लिया, लोग समझते रहे कि हमें कुछ हुआ ही नहीं। तेरी यादों की खुशबू से महकता है दिल, तो दूर है मगर फिर भी धड़कता है दिल। कभी फुर्सत मिले तो हमें भी याद कर लेना, हम आज भी तुम्हारे इंतजार में हैं। ओके जी, ये तो बढ़िया हो गया। और मुझे बताएं जी, स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया नहीं? अलीशा कहती है कि अच्छा अलीशा आपने गाना लिखा है, कहती डेडिकेट माय ब्रदर सदाम हुसैन चांडियो। ओके अलीशा। मधोश भाई लिखते हैं कि अदी ही गानो हलायो खिली अदमा डिसां थी मिलियो गानो तो हलाए बैठू था। किशोर भाई कहते हैं कि अदा हाण चवण इयो तवां जो कमेंट मुखे समझ में ना आयो अदा, एक्सप्लेन अस प्लीज। अच्छा फहीम भाई कहते अदा असां जो गानो प्ले तवां जो गानो थर्सडे जी प्रोग्राम जी लास्ट लिंक में हला।

देरो में हथियार बंदन की दुकान से फायरिंग पंज जणा कतल मारजी वैलन में पी ए संदस ब पुट शामिल आन फोतिन में रजब घांगरो संदस ब पुट रियाज ए कुर्बान घांगरो शामिल आन बिलावल घांगरो ए वाटेड़ो अब्दुल्ला बिरोई पी गोलिन जो खाज बणजी वया पुलिस जो चवण है त घांगरा बिरादरी जो मुख्तलिफ़ बिरादरीन सां तकरार हलंदड़ है घांगरा बिरादरी के मारजी वैल चयन जणन जो तालुक रतो देरो भरसां गोठ वदापुर सां आहे ऐं मकबूल पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि वधीक जांच जारी आहे सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपीके बलोचिस्तान में कार्रवाई 11 दहशतगर्द मारजी वया सिक्योरिटी ज़रिए मौजूद दखण वजीरिस्तान में खारजी दहशतगर्दन के थाकन के निशानो बनाया वो जै दौरान 5 दहशतगर्द मारजी वया बलोचिस्तान में माशकेर में बलो पुलिस चौकी से हमले बाद फरार थींदड़ 6 दहशतगर्द मारजी वया हुकूमत ए अपोजिशन में गालियों जो बो दौर अज थो जरियन मूजिब अपोजिशन पैंजा मुतालबा हुकूमत के पेश कर छाया पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकिली के अदालती फैसले से अमल कर मुतालबो हुकूमत अपोजिशन का लॉन्ग मार्च मुलतवी या खत्म कर मुतालबो किया अदालती फैसले से अमल दरामद की खातरी भी कराई ईरान सऊदी अरब से हमला कदड़ यमनी हुसैन का लातालुकी जाहिर कर छी ईरानी परडेही वजीर हुसैन से हमला कर बदरा सियासी राबतन की तजवीज़ दई छी परडेही मीडिया मूजिब ईरानी परडेही वजीर अब्बास इराकजी हुसैन के विच ओभर में अरब मुल्क हमल का लातालुकी जाहिर कदे हमल बदरा सियासी राबतन की तजवीज़ दिनी है खैरपुर में डिस्ट्रिक्ट बार पारा सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ रैली वकीलन सिंध खिलाफ साजिशों रद्द करण जो मुतालबो कर छो अगवाणन सिंध के वहादत से कें भी किस्म जो समझौतो न कयो वेंदो सिंध के इंतजामी बुनियादन से विरहण वारन मनसूबन के रद्द कयूं था चक के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन दौरान गुजरियल ढीह मारजी वयल मुबैना डोहारी जो लाश वारिस बिना पोस्टमार्टम खणाए वया गुजरियल ढीह गोठ वरियाम जतोई में ऑपरेशन दौरान शाहबेग पुट लश्करी जतोई मारजी वयो हो पुलिस हदबंदी जो जवाब जाना पोस्टमार्टम ला लेटर जारी न कयो वारिस औरतूं लाश बिना पोस्टमार्टम जे खणाए वयूं गम्बट में टे ढी अग आरिजा बिरादरी के बिन धुरी में झेड़े दौरान कतल थे नौजवान के वारसन जो एहतजाज मकतूल अजीब आरिजो जी अमर बेन औरतन से गजी पाक किताब खड़ी एहतजाज कयो औरत चयो तो मुझे पुट के नौकरी डारण के बहाने कातिलन 5 लख वरता पैसा वापस घुरण से नौजवान के कतल कयो जवाबदार गिरफ्तार कया वन पेट्रोलियम शहर के अगर में वाद खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज राधन में चिंकी रक्षा हलाइंदड़ रैली कढ़ी धरणो आयो डेरो लाल विलेज में पेट्रोल के वधंदड़ अघन खिलाफ चिंकी ड्राइवर पारा एहतजाज कयो वयो मुजाहिरीन चयो आहे त पेट्रोलियम शहर अघन में लागीतो वाद सबब असांजे रोजगार सख्त मुतासिर थी रहा आहिनि तेल सस्तो कयो वञे कंबर में वधंदड़ बदमनी है पुलिस की नाहली खिलाफ बे ढी बे एहतजाज जिलो सिंगारियो जिदोजहद कमेटी ए शहर तरफा एहतजाजी मुजाहरों वो अगवाणन है कंबर पुलिस की नाहली सबब समूरो जिलो बदमनी के वर चढ़ी वो है रोज दहाड़ा फुरू ए चोरियों मामूल बणल आईजी सिंध में अमन बहाल कराए नौशेरो फेरोज में जेल पुलिस ए सिपको अमलदार विच में लोड शेडिंग तां तकरार सिपको जा लाइन में जेल मुंतकिल मठियाणी रोड ते डी फिटिंग वट जेल पुलिस पहुंची सिपको जी लाइन में इन्हनि खे खणी जेल मुंतकिल करे छॾियो जेल सुप्रिटेंडेंट अबू बकर मंगी जो चवण आहे त जेल में अथराधू लोड शेडिंग कई पई वञे बार बार रोकण बावजूद सिपको जा मुलाज़िम गेट स्टेशन तां लोड शेडिंग करण बदिरां

0: मेहर में साफ पानी की फरामी न थियण गंदगी के आज़ार खिलाफ एहतजाज जी डी ए पी टी आई कौमी अवामी तहरीक बेन पार्टियों पारा वी डी बेदुआ चौक का घंटाघर चौक ताईं रैली कढी वई आहे। अॻवाणनि चयो आहे त मेहड़ में साफ पाणी जी फरहमी नाहे, गंदगी जे आज़ार आहिनि, रोड रस्ता उखड़ियल आहिनि, आवाम खे बुनियादी सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि। ऐं पनवा किन भरिसां पाणीअ जे ढंढ में माल जो वापारी ॿुॾी फो थी वियो आहे। ॻोठु वरियाम जतोई में 60 वरियनि जो माल जो वापारी साईंदास जतोई पाणीअ जी ढंढ में ॿुॾी फो थियो। ॿिनि कलाकनि जी ॻोल्हा बाद ॻोठाणनि पारां पाणी मां साईंदास जतोई जो लाश हथ कयो वियो। जमाल शाह भरिसां बारड़ो अहमद ज़रदारी वाटर कोर्स में ॿुॾी फो थी वियो आहे। वारसनि मूजिबि नींगर खे मिर्गीअ जो मर्ज़ु हो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
3: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
5: Super White!
6: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर, मोरो, मीरपुर खास, नटियारी, सकरन, मेरा पर मातली, नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है एंड डी स्किन फेस वॉश है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स मार्केट में आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, तो आप जाइए और परचेज कीजिए। क्योंकि जब तक आप परचेज नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पता कैसे चलेगा कि भाई साहब प्रोडक्ट्स कितने कमाल के हैं। अगर आप भी परचेज करने वाले हैं तो जल्दी से परचेज कीजिए, इस्तेमाल करते रहिए और हमेशा के लिए खूबसूरत होते जाइए। अच्छा, तो हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आ चुके हैं। जिन जिन लोगों ने अभी अभी हमें सुनना स्टार्ट किया है तो उनको भी वेलकम कहते हैं। सब सुनने वाले समातों को वेलकम इन खुशामदीद। बिल्कुल आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया है कि आप मुझे बताएं कि वो क्या चीज है जिसका कोई वजन नहीं लेकिन फिर भी उसे 20 लोग मिलकर भी नहीं उठा पाते। और इस सवाल का जवाब दीजिए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। 888 पर और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद है वो काइंडली पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें। ऐसे ये होता है कि भाई बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, बहुत सारे लोग ये जानेंगे कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जो इस्तेमाल है वो आपकी स्किन के लिए कितना और क्यों जरूरी है। ओके जी, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं तो आप लोगों को मैं बताने लगी हूँ कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के कितने सारे फायदे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आप हमेशा याद रखा करें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना जनाब, ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है। यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है, जो आपकी स्किन के डॉक्टर्स होते हैं ना, बिल्कुल उन्होंने मिलकर तैयार किया है। तो अगर आप भी कोई ऐसा लाइट वेट सा फार्मूला लगाना चाहते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं जिसके अंदर कोई भी हार्श से केमिकल ना हो, बस नॉर्मल सा फार्मूला हो और मेडिकेटेड फार्मूला हो, ये तो भाई बहुत जबरदस्त बात हो जाती है। और कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो आपको रिजल्ट भी दे जनाब, बड़ी कमाल के शानदार। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जब आप यूज करते हैं तो आप लोगों को रिजल्ट जो मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से मिलते हैं। बिल्कुल जी, यानी कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने लगेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपके पास ऐसा प्रोडक्ट मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके आप सिर्फ 2 रातों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे वाले रिजल्ट जो है ना वो मिलते रहेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है वो जनाब एक मेडिकेटेड फार्मूला है, साथ साथ ये 2-in-1 फार्मूला है। और पूरे पाकिस्तान में जब आप देखते हैं ना कि भाई इतनी सारी क्रीमें मिल रही होती हैं, जो इतनी सारी क्रीमें होती ना उनमें सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन बीट्स और माइक्रो बीट्स का ना वो एड किया गया है, डाला गया है। तो यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी उन्हीं क्रीमों में से एक है कि भाई इतना प्रीमियम फार्मूला आप लोगों के लिए तैयार हुआ है, तो इससे भरपूर फायदा उठाइए और इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। क्योंकि जनाब खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में शामिल करेंगे जब डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन के रूटीन को मजीद खास बना देगा। आपकी स्किन साफ सुथरी और अच्छी तरह से मॉइस्चराइज हुई ना वो नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी शख्सियत में ताजगी और एतमाद का एहसास भी पैदा हो जाएगा। तो अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन को बनाइए ज्यादा खूबसूरत, आसान और इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। क्योंकि जब भी आप स्किन के करने लग जाते हैं ना, तो भाई बहुत सारी ऐसी चीजें होती जो अपने चेहरे पर आप अप्लाई कर रहे होते हैं, आपके पास एक तो टाइम इतना ज्यादा नहीं होता, या फिर अगर आप अपने कामों में इतना मसरूफ है, आजकल के दौर में तो भाई वैसे ही लोग बहुत ज्यादा मसरूफ है, उनसे पूछे आपको क्या काम है तो वो बेशक 3-3 घंटे रील्स देख सकते हैं लेकिन वो कहेंगे कि हमारे पास कोई टाइम नहीं है। तो इस भाग दौड़ती दुनिया में अगर आप भी अपने चेहरे को ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, ख्याल रखने के साथ साथ चेहरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का बस इस्तेमाल कर लीजिए। इसके अंदर फेशियल की क्वालिटीज भी हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट अप्लाई करना हो जो कि सिर्फ और 2 रातों के इस्तेमाल से आपको रिजल्ट दे दे, तो भाई आप लाजमी ट्राई करके देखिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। साथ में आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है, तो डी स्किन का जो फेस वॉश है ना इसे भी आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। और डी स्किन का फेस वॉश ये तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, क्योंकि जो
बहुत से लोग आकर मुझे ये कहते ना कि बाजी असा क्रीमू ना आयू वणंदा तो बाबा तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सगो था शत डी स्किन ब्यूटी क्रीम को मेडिकेटेड फार्मूलो आ है ना कि डॉक्टर्स ठायो आ है तो तमा दिल खोले करे अखियो बूटे करे लगाए सगो था आई डी स्किन जो को फेस वॉश आ है ना यो तमा हर उम्र में भी लगाए सगो था आई तमा जे घर जो एक एक फर्द लगाए सगे तो आई डी स्किन जो को फेस वॉश आ ना यो तमा जी स्किन की हमेशा हाइड्रेट रखंदो आ है मॉइस्चराइज रखंदो आ है आई तमा जी स्किन ते जेका ये गंद अची वेंदिया जमा थी वेंदिया या पोल्यूशन जमा थी वेंदिया तमा बाहर साइड ते कोई वर्क कंदा आयो जेकी वजह से तमा पांजी चेहरे के घड़ी घड़ी वॉश न करे सकंदा आयो या वरी तमा एक दफो टाइम ते वॉश करे सगो था तो तमा डी स्किन फेस वॉश सा पांजो चेहरो अगर वॉश कंदा तो तमा जी स्किन जे अंदर ताजगी अची वेंदी तमा जी स्किन ते निखार अची वेंदो आई तमा महसूस कंदा तो वाकई तमा कुछ सुठो इस्तेमाल कयो आ आई डी स्किन जो को फेस वॉश है ना कि तमा 3 खां 4 मरतबा अप्लाई करे सगो था सुबह जो लगायो मंजन जो लगायो आई रात जो लगायो रात जो तो लाजमी लगाए जो रात जो फेस वॉश करे आई पोए तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के जदे अप्लाई करना ना पो तो साई वाह वाह थी वेंदी छो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुए या वरी डी स्किन फेस वॉश हुए हि बई चीजों तवाजे खूबसूरती में चार चंड लगाने वाली हैं सो तवा भी ट्राई करी सगो था हर स्किन के हिसाब से तैयार थियल है अगर तवाजी स्किन सेंसिटिव भी है कोई भी हिमल तई प्रोडक्ट अगर तवाजी स्किन ते सूट ना ही करे सगो तो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम आ ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिंदाबाद जियो करे से और जनाब अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए तो उसका भी हल आपको बता रही हूँ कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर कैसे अवेलेबल करा सकते हैं आप बस नंबर्स के ऊपर राता कीजिए जो नंबर्स आपको प्रोग्राम के अंदर बता रही हूँ पहला नंबर है जनाब 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 25 970 आई बियो नंबर आहे 033-27-38-4309 बुड़ी 332 73-84-309 ही बई नंबर सां जे के तमा डायल करे इजीली पांजे करे भी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराए सगो था सो अवेलेबल करायो बाबा इस्तेमाल करना हलो तमा भी खूबसूरत थियो बाबा तमा भी डिजर्व करे थाकड़ो सुठो प्रोडक्ट सो तमा जिला मार्केट में अवेलेबल आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई हां अगर तमा ये सोचो था त बाबा असा सिटी वनी जडे वेंदासी शहर त वठी इंदासी डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये सोचो ना ला करे ता शहर वनो इन का सुठो आ तो तुम नंबर से रातों करे पैंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराए छो अगर ऑलरेडी डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम्हारे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल है पर डी स्किन जो फेस वॉश अना तीन कौन मिली रो है भी तुम नंबर से रातों करे पैंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन जो फेस वॉश भी अवेलेबल कराए सको था सो ही बई प्रोडक्ट्स तुम इस्तेमाल कर गड इस्तेमाल करे चेहरे की खूबसूरती है ना उनके वधंदड़ ऐसो तुम्हें यकीन दिल खुश थी वी असि भी दिल खुश थी वी जैसे असें सोने लिसनर्स के सोनो थींदो ॾिसंदासीं वधीक सोनो थींदे ॾिसंदासीं सो तव्हां ट्राई करे ॾिसजो ट्राई करण जा त भला पैसा कोन्हनि हिकु दफ़ो वठी अचो इस्तेमालु कयो पोइ कलर ना टुॾियो अलाए कहिड़ी अदा चयो न त भई मां हीअ 3 डबी वठी आयो आहियां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी सो तव्हां बि अगरि चाहियो था त तव्हांखे बहितरी ख़ूबसूरती मिले त तव्हां बि वठो डी स्किन ब्यूटी क्रीम पोइ बाबा तव्हां पाण ई चवंदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाह जो प्रोडक्ट आहे

हा भाई छा अञा तोखे समझाया। ये जेके माण्हू आहिनि न अॼुकल्ह टू फेसिस माण्हू, इन्हनि खे त डे स्किन ब्यूटी क्रीम बि ॾाढी ख़र्च थींदी हूंदी, छो त हू ॿिन्ही चेहरनि ते लॻाईंदा हूंदा। अगरि तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो आहे त मूंखे ॿुधायो जल्दी जल्दी, जीअं असांखे ख़बर पई त बाबा तव्हां बि इस्तेमालु कई आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ऐं तव्हां बि यकीन सुहिणा थी विया हूंदा। अच्छा, हिते तव्हांजा कुझु मैसेजेस आहिनि त मैसेज तरफ़ अचूं था, पैनल जी तरफ़ अचूं था, त पैनल ते तव्हांजा कुझु मैसेजेस आहिनि, उन्हनि खे सभ खां पहिरीं पढ़ी वठूं। सभ खां पहिरियों जेको मूंखे मैसेज मिलियो आहे उहो मिलियो आहे अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आई एम अनवर अली बलोच फ्राम सोनाड़ी फ्राम, अच्छा वो है जनाब, आपने टॉपिक का जवाब दिया है। अच्छा वो कैसे हो सकता है भाई, बताएं मुझे जरा। और मकसूद मलहा हमारे साथ है मेहरापुर से, कहते हैं कि हेलो सिद्रा मुस्कान, आपका शो बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक, आई लाइक योर शो, मुझे निगत नाज का गाना सुनाए। हाजिर हाजिर, इन गाने का निगत नाज जो गानो हलंदो। और चाचा खालिद हमारे साथ है, तुम गाने की फरमाइश कई ओके चाचा। वोट नबीदाद बमरो नारो खां इमाम रिनो बमरो भाई हमारे साथ है, भाजू मोहब्बत तू आए तुम असाजे प्रोग्राम में शामिल आयो। और ये बकर अली हमारे साथ है, बकर अली फ्रॉम केची केची उन्नड़, सलाम सिद्रा जी, वालेकुम अस्सलाम, कहते आप ही आप कैसी हो, आज के टॉपिक का जवाब है दुख और दर्द, हाय अल्लाह। अच्छा हे भी माना गाने जी कठ थे, या मां सोचा पे ये पांजो तजलाए जा तरकिया बाबा। ओके बकर अली भाई आपका बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साथ है पोएट्री अर्ज है, गरीबों की है, और गरीबों की राय और फर्क लोगों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए, फारक, अच्छा गरीबों की राय और फारक लोगों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए, क्यों भला नहीं लेनी चाहिए जयपाल भाई, आप बताइए मुझे जरा, फारक की तो समझ आती है गरीबों की क्यों नहीं, ये बताइए जरा। और कहते हैं कि भाऊ अर्ज करते हैं, लोग कहते हैं कि किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना जरूरी हो जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब किरदार पर बात आ जाए तो बात ही खत्म हो जाती है जयपाल भाई। ओके ओके समझ गए समझ गए। और कहते हैं अर्ज किया है भाऊ, उदास मत होना क्योंकि मैं साथ हूँ, सामने ना सही पर तेरे आसपास हूँ, पलकों को बंद करके जब भी दिल से देखोगे मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जयपाल भाई कराची से मैं सुन रहे हैं, क्या बात है जयपाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और अब्दुल्ला महर हमारे साथ कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज की है मैंने और मेरी फैमिली ने भी रिजल्ट ब्यूटीफुल मिला है, डेडिकेट आपको सॉन्ग फायजा अली फेवरेट सिंगर। ओके जी, फायजा का गाना आपको जरूर डेडिकेट कर देंगे क्योंकि आप और आपकी फैमिली डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाती है।

को साल जी त खबर कोने लाए काथे हुए बाकी आने कुछ महीने खां त असानी प्रोग्राम में आए डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में बुधे पयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जका इस्तेमाल भी करे पयो जो हाल हवाल ही आए ना बिल्कुल ही है यार है। अच्छा ये हमारे साथ ही अब्दुल्ला महर मीरपुर खास से कहते हैं डेडिकेट आपको फायजा अली का गाना। जी जी भाई आपके लिए फायजा का गाना लगाते हैं। और हमारे साथ है एस डी जेपाल। हेलो आरजे भाऊ हाउ आर यू, खुश रहें, थैंक यू। आप भी मेरे प्यारे भाई। और कहते हैं भाऊ काम में हूँ, नेक्स्ट ज्वाइन करूंगा शो, एंजॉय। ओके और ओके ओके बहुत शुक्रिया भाई जान। एडम कहती है कि ओ माय डियर दिलबर दोस्त, मुझे लग रहा है कि बस आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जानती हैं कि मैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रही हूँ, समझ रही हैं, तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए। और हमारे साथ ही हमारी फजली कहती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय स्वीट पेस्ट आरजे शहजादी सिस्टर सिद्रा मुस्कान, कैसी हो स्वीटी? सलाम टू कायनात और सब सिस्टर्स को। मैं लंच कर रही हूँ एंड आपका शो भी सुन रही हूँ। लंच करें, बिस्मिल्लाह करें। जी जी बिस्मिल्लाह करें, आप खाएं पिए इंजॉय करें। और वाह वाह वाह वाह माशाल्लाह, आप अच्छी कुकिंग करती हैं। खाया नहीं लेकिन हाँ बता सकती हूँ।

आवाज साई वाह मयारू हलन थियूं मां मयार ॾियां में डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कोन कई अथव तव्हां ते त मयार ठहे बि थी सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो बाबा इस्तेमाल करे तव्हां मूंखे ॿुधायो त तव्हांखे रिज़ल्ट कीअं मिलनि पिया किशोर भाउ कहते की हल हू दौर हो माण्हू इशारो सम्झी वेंदा हुआ अरे कहना क्या चाहते हो अच्छा कुछ लोगों के कमेंट्स ऊपर भी चले गए होंगे तो जिनके नहीं मैं रीड कर सकूं तो आप जरा ऐसा कीजिएगा कि दोबारा अपना कमेंट पेस्ट कर लीजिएगा कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा अच्छा उनका अलावा वहीद वफाई हमारे प्रोग्राम में मौजूद है वालेकुम अस्सलाम कहते हैं जी क्या हाल है आपके माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम फ्रॉम जेकब आबाद से आपके साथ हूं बहुत शुक्रिया चाचा खालिद कहते हैं कि मूं साहिर बगाजो गानो हाज सुल्तानला साहिर बगाजो गानो लाइन था पर जेका तव्हां फरमाइश कई ना उहा एरिया त हुन खे लास्ट में ई लॻायो वञे सो तव्हांखे थोरो सबर करिणो पवंदो पर वाह तव्हां टॉपिक जो जवाब ॾिनो आहे ओका हाँ भाई हाँ मुझे तवां चवण ते दवा न खाए जो बस मुझे चवण ते तवां प्रोडक्ट जो यूज करे सको था छो त प्रोडक्ट जे बारे में तवां के जेका भी डिटेल दींदी आहे वह सफा सही दींदी आहे बाकी हाँ दवा जेका है तवां डॉक्टर का पुछी करे खाईंदा कयो बाकी अगर तवां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो था तो पो त वाह वाह आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल तवां जे करे भी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सघूं था पर जॾहिं तव्हां नंबर ते राबितो करे पंहिंजो हाल अहिवाल ॿुधायो त किथे किथे नथी मिले असां कहिड़ी ख़बर त भला किथे किथे अञा ताईं अवेलेबल कोन थी आहे सो तव्हां बि इस्तेमालु कयो ऐं तव्हां बि ख़ूबसूरत थियो ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स खे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराईंदा रहो हिते टाइम थियो आहे बाबा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था वापसी जल्दी मोटी तव्हां ॾींदासीं तव्हां कारी न वञो हिते वेठा हुजो ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: जरा बहन, जरा बात तो सुनो. हटो पीछे, भागो.
3: अहमद, हटो वहां से.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें. सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी.
4: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
5: स्किन हर इमेज लाइ छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जे में आहिन चावरन जो खूबियो ए कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के ब्लॉक करे ए चावरन जो खूबियो जल्द मा फाइन लाइंस ए झुरन के घट कन ए रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम नीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ए ब्राइट उन संगरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जे जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.
6: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज.
7: ढाडो सुठो
6: जीए FM 88 नेटवर्क,
8: सिंध की आवाज.

जिंदगी ए जिंदगी तेरे फैसले बड़े सख्त ठहरे, जिन्हें अपना समझा वही अजनबी निकले, और जिनसे उम्मीद बांधी वही दिल तोड़ गए। हमने तो हर मोड़ पर तुझे खुश दिली से कबूल किया, मगर तूने हर मोड़ पर हमारे हिस्से में कोई नया दुख और कई नई आजमाइश लिख दी। कभी हालात ने तोड़ा, कभी अपनों ने, और कभी उन यादों ने, जिन्हें हम चाहकर भी अपने दिल से जुदा न कर सके। हम मुस्कुराते रहे ताकि दुनिया को लगे कि सब ठीक है, मगर अंदर कहीं एक शख्स रोज थोड़ा थोड़ा टूट पा रहा, और जिन ख्वाबों को आंखों में सजाया था, वक्त ने उन्हें हकीकत बनने से पहले ही मिट्टी में दफन कर दिया। अब ना किसी से शिकवा है, ना किस्मत से कोई गिला, बस दिल चाहता है कि कुछ लम्हों के लिए ये जिंदगी अपनी तमाम शक्तियों समेत खामोश हो जाए। और ए जिंदगी, अगर यही तेरा दस्तूर रहा तो फिर इतना हौसला भी दे कि हम अपने टूटे हुए वजूद के साथ बाकी सफर तन्हा तय कर सके, क्योंकि किसी और को खोने की, किसी और को छोड़ने की अब हिम्मत नहीं रही।

जी जी क्या बात है, बहुत ही मतलब अच्छा सा गाना हमने एंजॉय किया। हमारे पास एक और गाना मौजूद है जो कि होने वाला है जी मतलब एक अच्छे वाले सिंगर है, तो इनका हम गाना सुनेंगे। इसको थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, अब सही है।

ओके जी, मोहब्बत न रही आ बाबा, रही छा कजे दुनिया में, रही छा कजे बाकी काडे वेंदो। कोई भी वो प्लान ठाए हुआ जा बिला। चलो खैर, यहाँ पर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और खूबसूरत होते जा रहे हैं।

ओके जी, गाना तो अच्छा है, गाना अच्छा है, नो डाउट. और आप ऐसा कीजिए, आप डे स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जरा जानिए, क्योंकि डे स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जानेंगे तभी तो आपका दिल करेगा कि भाई हाँ मुझे भी लगानी चाहिए. क्योंकि वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने लगा कर देख लिए, लेकिन जब आप डे स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करेंगे, ट्राई करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई डे स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में मैं इतना आखिर क्यों बताती हूँ. क्योंकि डे स्किन ब्यूटी क्रीम को जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये चीज तो हो ही जाएगी कि भाई आपके चेहरे पर जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारे दूर हो जाते हैं. सबसे बेहतरीन बात की डे स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है और ये 2-in-1 फार्मूला है. अगर आप डे स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने लगेंगे ना, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये फायदा तो आपको देगी कि भाई आपके चेहरे पर जितने भी ये टॉक्सिक से एक्नी आ जाते हैं या फिर ये बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा बुरा असर छोड़ जाते हैं, तो उन तमाम चीजों को भी खत्म कर देगा. और साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं तो सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको मिलता है परफेक्ट वाला निखार. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना, ये विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स का ना ऐड किया गया है, ये आपको फेशियल का जो है ना वो रिजल्ट देने वाले. तो अगर आप चाहते हैं आपके घरों में कोई शादियां हो रही हैं या फिर आप बाहर जाकर कोई महंगे से फेशियल नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो आप घर बैठे डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर लें, बस ये काफी हो जाएगा. और जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही वाकई आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं. उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो लोग इस्तेमाल करें उनके भाई बड़ी अच्छे से हमें पॉजिटिव से रिस्पॉन्स मिलते जा रहे हैं, तो आप कब इस्तेमाल कर रहे हैं जरूर से बताइएगा. उनके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी बाबा यहाँ भी खास गाल है कि यह चीज मैं तक बुधाई हल छो तो कुछ मानू वो सोची ना हों सिद्रा जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बुधाई थी, तो इन में फेशियल की क्वालिटीज शामिल हैं, अगर तुम इस्तेमाल करना तो तक फेशियल जो रिजल्ट मिल न तो इस्तेमाल कन तो क्रीम लगाए कर मसाज कर इस्तेमाल कर. अगर तुम इस्तेमाल कर शुरू किया तो मसाज न कर ही नाइट क्रीम है, बजाय नाइट क्रीम है, पर अंदर जी चीजों एड थियल उसे रिजल्ट फेशियल वो डेण वाली है. जड़ी भी तुम्हां कोई भी नाइट क्रीम जो इस्तेमाल कयो तो उनके तुम्हां सिर्फ आराम सा पानी उंगलियों की मदद से लगाइंदा रहो. ये लगाए क्रीम थोड़ी तुम्हारे चेहरे ते नजर अचे, छो तो कुछ मानू वरी लगाए छड़ींदा सफा क्रीम जेका ना जज्ब कराइंदा स्किन के अंदर, स्किन के अंदर क्रीम जज्ब न करायो वा पान जज्ब थी वेंदी, तुम्हारी स्किन ते सफा भला रिजल्ट छड़े दींदी. सो अगर तुम्हां ये सब चीजों का अवॉइड कयो था, तुम्हां मसाज भी कयो था स्किन ते, तुम्हां स्किन के अंदर क्रीम के जज्ब भी करायो था, तो जाहिर गल तुम्हें रिजल्ट न मिली सकता जे हासिल करण चाहियो था. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के प्यार सा सुकून सा लगायो, राजे टाइम ते लगायो, लगान का पेना पांजो फेस वॉश कयो डी स्किन फेस वॉश, उन का पोई जदी तमा दिसना त तमा के सफा भला रिजल्ट्स मिली चुका होंदा. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे एंड डी स्किन जो फेस वॉश आहे, ट्राई कंदा रहो आई हमेशा जलाए पांजे खूबसूरत से चेहरे के मजीद खूबसूरत बनाए छियो. उन का अलावा असने प्रोग्राम जी लास्ट लिंक आहे बाबा डाडू भलो असा गानो बुधो सी, हिकरो ट्रैक आहे जी जी असा के अलीशा फरमाइश कई ही, जको गानो असा बुधो सी उन की उन जी फरमाइश असा के किशोर भाई कई हुई, जो पेरी बुधो सी ना की चाची जी फरमाइश थे. सो अमां जो बिल्कुल फरमाइशू आन लिस्ट फुल थी वही है बाबा, हाँ गाना हारजन था सो को भी गाने जी फरमाइश न करे.

जी आपके कमेंट्स और मैसेजेस की जाने भी आ जाते हैं। टाइम बहुत थोड़ा जाके बचा है और यहाँ पर हमारे साथ फहीम भाई कहते हैं कि सुबाने फेस वॉश वठंदस लाड़काने माँ जी बिल्कुल तव्हां फेस वॉश वठिजो लाड़काने में तव्हांखे आराम से मिली वेंदी ऐं अच्छा रमजान भाई हमारे साथ मौजूद कहते हैं वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई आपको वेलकम इन खुश आमदीद कल परसों आपका गाना लगाया तो था और फरवा कहते हैं ओके ओके फरवा बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे और रमजान भाई लिखते हैं कि दिल उदास हो तो बात कर लेना दिल चाहे तो मुलाकात कर लेना हम रहते हैं आपके दिल में वक्त मिले तो तलाश कर लेना ओके भा ओके और कहते हैं प्लीज सॉन्ग प्ले करना भा हाजिर टाइम बच्चू तहलाई बैठू था और ये हमारे साथ हैं अब्बास के साथ अब्बासी भाई लिखते हैं कि मुस्कान देयर इज मैजिक इन योर स्माइल व्हेन यू स्माइल माय होल डे बिकम ब्यूटीफुल ओके ओके और उनखां अलावा अलीशा हां ठीक है अलीशा तां पांजो गानो एंजॉय कयो

0: वाह साईं वाह इरम हमारे साथ हैं बहुत शुक्रिया इरम अल्लाह सही तमाम जी जिंदगी में आसानियों आने हैं अल्लाह करी तमाम खुशियों माने हो सही आ और गोट मोमन तैयब थेबो का हबीब अल्लाह थेबो कहते हैं तमाम जो शो वेरी नाइस आई सलाम तमाम के वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिद्रा साहिबा तमाम जो तमाम जा सब प्रोग्राम भला है अच्छा मुझा तो सब प्रोग्राम भला है पर तमाम पांजो नालो तो लिखियो को ना है कैसे सगर मौजूद आयो नालो पांजो लिखना कयो अब्दुल सतार बमरू भाई हमारे साथ कहते हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम अब्दुल सतार भाई लिखते हैं जबरदस्त प्रोग्राम जबरदस्त आवाज थैंक यू परवा कहती हैं आप भी तो हमारी डॉक्टर है ना आप 2 घंटे क्रीम के बारे में बताते हो वो भी बगैर फीस के देख लें बस आप इस्तेमाल करें तो आपको पता चले कि ये आपको 2 घंटे में क्यों बताते हैं क्योंकि भाई डी स्किन प्योरी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई सदरा इतना क्यों बताती है डी स्किन प्योरी क्रीम के बारे में अच्छा जवार मोहम्मद बचल शंबानी भाई हमारे साथ हैं हाँ ही जलाल चांडियो साहब है अच्छा मोहम्मद जमान भाई आपने बोला तो सही कि भाई आज हमारी भी फरमाइश है लेकिन आपने गाना आकर ठक लास्ट लिंक में शेयर कर दिया तो ऐसा है कि जब आप फरमाइश करें तो स्टार्टिंग में ही अपना गाना लिख दिया करें भेज दिया करें ताकि वो हम प्रोग्राम में ना जब भी मुझे टाइम मिले तो आपके लिए गाना लगा सके तो अब ये जो आपने लिंक शेयर कर दी मुझे लास्ट में इस गाने को हम 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुनेंगे नहीं तो फिर हम कल वाले प्रोग्राम में सुन लेंगे ठीक हो गया दर्द दिल हमारे प्रोग्राम में मौजूद है वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून मैं ठीक हूँ तुम बताओ कैसी हो और कहती हैं कि
1: जबड़न ते यहाँ लाली यार कहीं जो पीड़े
0: अच्छा उनके अलावा शायरी मोकलिया चाहती हाय बहुत प्यारी पोइट्री चंदा थैंक यू वेरी मच फहीम कहते वाह वाह अदा तू भी ऐसा मांग बिल्कुल ही यार और ये दर्द दिल कहती आज लेट हो गई थोड़ी मतलब बहुत ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा वाकई आपको लेट हो गई और उनके अलावा हमारे साथ हैं जी अबू हनीफ अल बलोची कहते हैं कि आज फिर की थी मोहब्बत से तौबा आज फिर तेरी तस्वीर देखकर इरादा बदल गया क्या बात है जी क्या बात है और चाचा कहते हैं थैंक्स फॉर सॉन्ग भाई आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा और बलोच के कहते हैं कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं अल्लाह जाए बुदा कसम दे जमशेद फारूकी हमारे साथ हैं कहते हैं प्यारी मरियम फारूक और फारूकी जारिश शहमीर और मुजफ्फरगढ़ से आप हमारे साथ मौजूद हैं सबको वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं जी बहुत शुक्रिया के साथ हाँ बाबा असांके गानों बुधी भी मजो अची वियो हाँ असांके लिस्ट में जेको लास्ट ट्रेक आ वो बुधी वेठूं था सो बिल्कुल आप प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा था डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि आपके लिए हमने हर जगह अवेलेबल करा दिए हैं अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो जरूर से कीजिएगा अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने वाले हैं तो आपको जो प्रोग्राम के अंदर नंबर बताया जाता है उसके ऊपर रابطہ किया करें रابطہ करेंगे तो भाई साहब आपके लिए आसानी हो जाएगी कि बस आप नंबर के ऊपर रابطہ कर लेंगे कॉल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे उन्हें बता देंगे कि भाई हमारे यहाँ नहीं मिल रही डी स्किन ब्यूटी क्रीम या फिर डी स्किन फेस वॉश तो वो अवेलेबल करा देंगे तो जल्दी जल्दी से अवेलेबल कराइए खूबसूरती की दुनिया में आप भी कदम रखिए और आप भी इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस

दर्दे दिल पे वही बोल रही है ना ना ना ना। अच्छा था। और बशीर बलोच हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और आप हमें सुन रहे हैं कराची कायदाबाद से, बशीर अहमद बलोच एंड आरजे नूर मोहम्मद भुट्टो को सलाम। ओके, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहते हैं। अखलाक भाई कहते हैं नाइस शो, थैंक यू वेरी मच कहते हैं। जी जलाल जी, जी जी ना ना ना ना बोले। और किशोर भाई कहते हैं अदा तू जा पंज बजे यार प्रोग्राम जी पोस्ट ते कुछ लिखी भी ना था सगू हाँ। हाँ बिल्कुल ही आहे, पहिरियां थोरो ईअं हो त थोरो देरि सां बि बंदि थिए, हाणे त वरी ॾींहों ॾींहों जेको आहे न सफ़ा अॻिते थींदो थो अचे टाइम। लॻे थो मूंखे त हिकिड़ो वरी टाइम ईंदो जॾहिं पोस्ट अपलोड कंदासीं त हुन टाइम में बसि बंदि थी वेंदी।

भारतीय बॉर्डर फोर्स जी फायरिंग में बिन पाकिस्तानन जी शहादत ते पाकिस्तान जो सख्त एहतजाज। भारतीय नाज़िम महमूद परदेही ऑफिस तरफ एहतजाज जी खत भी दिनो वयो। हथे खाली शहरन के दर अंदाज करार देण वारे भारतीय कोशिश भी रद्द। वाक्यो बुनियादी इंसानी हकन ए हक जिंदगी जी संगीन भंजकड़ी करार। भारत का जिम्मेवार बॉर्डर फोर्स के अहलकार खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो। परदेही खाते मौजूद भारत बॉर्डर फोर्स हथी खाली बेगुनाह पाकिस्तानी शहरन के शहीद कयो। भारत बुनियादी इंसानी हकन ए आलमी कानून की पासदारी यकीनी बनाए। हथे खाली शहरन के बिना जवाज ए चिट डियारींदड़ ताकत इस्तेमाल कई वही। अड़न वाक्य के रोकण लाओ पाव वरता वजन। वफाकी गरु वजीर मोहसिन नकवी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। गुजरियल ढी अपोजिशन से थियल गाल बाबत आगाह कयो। जरियन मूजिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ए मोहसिन नकवी की मुलाकात तकरीबन डेढ़ कलाक जारी रही। वजीर आजम अपोजिशन से गाल बाबत मोहसिन नकवी के हिदायतू भी डिन्यू।

पीटीआई लॉन मार्च जो सर वापस वठंदी या हुकूमत अपोजिशन जा मुतालबा तस्लीम कंदी। हुकूमत अपोजिशन विच में गालन जो बियो ऐं फैसलाइतो दौर कुछ देर में शुरू थियण वारो। स्पीकर आया सादिक जी इदारत हेठ थींदड़ हुकूमत अपोजिशन जी गालन में बई धुरियूं हिक ॿिए खे गुज़िरियल ॾींहं पेश कयल तजवीज़नि ते जवाब ॾींदियूं। हुकूमत गुज़िरियल ॾींहं पीटीआई खे लॉन मार्च ईरान सऊदी अरब ते हमला कंदड़ जमी हुसैन खां लातालगी ज़ाहिर करे छॾी। ईरानी परॾेही वज़ीर हुसैन ते हमले करण बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾेई छॾी। परॾेही मीडिया मूजिबि ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकची हुसैन जे विच ओभर में अरब मुल्कनि ते हमलनि खां लातालगी ज़ाहिर कंदे हमलनि बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾिनी आहे। रतोदेरो में हथियारबंदनि जी दुकान ते फायरिंग, पंज ॼणा क़तल मारिजी वियलनि में पीउ ऐं संदसि ॿ पुट शामिल आहिनि। फोतियुनि में रजब गांगरो, संदसि ॿ पुट रियाज़ ऐं क़ुर्बान गांगरो शामिल आहिनि। बिलावल गांगरो ऐं वाटेड़ो अब्दुला बिरोही बि गोलियुनि जो खाध बणिजी विया। पुलिस जो चवणु आहे त गांगरा बिरादरी जो मुख़्तलिफ़ बिरादरीनि सां तकरार हलंदड़ आहे। गांगरा बिरादरी जे मारिजी वियल चइनि ॼणनि जो तालुक़ु रतोदेरो भरिसां ॻोठु वदापुर सां आहे ऐं मक़तूल पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि। वधीक जांच जारी आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं केपीके में बलोचिस्तान में कार्रवाइयूं, 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि ॾखण वज़ीरिस्तान में ख़ारजी दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो, जंहिं दौरान 5 दहशतगर्द मारिजी विया। बलोचिस्तान जे माशकिल में पुलिस चौकी ते हमले बाद फ़रार थींदड़ 6 दहशतगर्द मारिजी विया। डिस्ट्रिक्ट बार पारां सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ रैली। वकीलनि सिंध ख़िलाफ़ साज़िशो रद्द करण जो मुतालबो करे छॾियो। अॻवाणनि चयो आहे त सिंध जी वहदत ते कंहिं बि क़िस्म जो समझौतो न कयो वेंदो। सिंध खे इंतिज़ामी बुनियादनि ते विरिहाइण वारनि मनसूबनि खे

रत गई था। गंबट में टे आरिजा बिरादरी के बिन धुरन में झेड़े दौरान कत्ल थे नौजवान के वारसन जो एहतजाज मकबूल अजी बारे जो जे अमर बेन औरतन सा गजी पाक किताब खड़ी एहतजाज औरत है तो मुझे पुट के नौकरी दियारण के बहाने कातिलन 5 लख वरता पैसा वापस घुरण से नौजवान के कत्ल किया जवाबदार गिरफ्तार किया वन। पेट्रोलियम शयन के अघन में वाद खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज बणियल रादड़ में चिंची रक्षा ड्राइवर हलाइंदड़ रैली कढ़ी ए धरणो हयो आहे। उडेरो लाल विलेज में पेट्रोल के वधंदड़ अघन खिलाफ चिंची ड्राइवरन पारा एहतजाज कयो वियो आहे। मुजाहिरीन चयो तो पेट्रोलियम शयन अघन में लागीतो वाद सबब असांजे रोज़गार सख्त मुतासिर थी रहा आहिनि, तेल सस्तो कयो वञे। कंबर में वधंदड़ बदमनी है पुलिस के नाहली खिलाफ बे ढी भी एहतजाज जारी। जिलो सिंगारो जिदोजहद कमेटी ए शहर तरफा एहतजाजी मुजाहरों किया। अगवाणन कंबर पुलिस की नाहली सबब समूरो जिलो बदमनी के वर चढ़ी वो है। रोज धाड़ा फुरू ए चोरू मामूल बणियल आईजी सिंध अमुन बहाल कराए। नौशेरो फिरोज में जेल पुलिस ए सेपको अमलदारन विच में लोड शेडिंग तकरार। सेपको जा लाइनमैन जेल मुंतकिल मिठाणी रोड ते डी फिटिंग वट जेल पुलिस पहुंची सेपको जे लाइनमैन के खड़ी जेल मुंतकिल करे छो। जेल सुप्रिटेंडेंट अबूबकर मंगी जो चवण है त जेल में अथरादू लोड शेडिंग कई पी वे बार बार रोकण बावजूद सेपको जा मुलाजिम गेट स्टेशन ता लोड शेडिंग करण बदरान जेल की डी फिटिंग लाहे वन था। सेपको मुलाजिमन जो जेल इंतजामिया ते हिसाइण जो इल्ज़ाम। मेहड़ में साफ पानी की फरहमी न थियण गंदगी के आज़ार खिलाफ़ एहतजाज। GDA PTI कौमी अवामी तहरीक ए बेन पार्टियों पारा 20 डी में दुआ चौक का घंटाघर चौक तीन रैली कढ़ी वही है। अगवाणन मेहड़ में साफ पानी की फरहमी ना है गंदगी के आज़ार हैं। रोड रस्ता उखड़ियल आवाम के बुनियादी सहूलतू फराम क्यों वन।

0: स्पेन में बरसातनि बाद शहरी बोर्ड वारी सूरत हाल केतिरा ई इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया। गाॾियूं बि लुड़ी वयूं, शहरनि घरनि ताईं महदूद थी विया। फ्रांस में शागिर्दनि जो एहतजाज घटि न थियो। 1000 स्कूल बंदि, मुज़ाहिरनि केतिरनि ई इमारतनि ऐं गाॾियुनि खे बाहियूं ॾेई छॾियूं। पुलिस ॿिनि हज़ारनि खां वधीक शागिर्दनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। चकरी में 305 पुलिस ऑफिसर ज़ख़्मी थिया, अमलदारनि मौजूदु। सूरत हाल ते जल्द ज़ाब्तो आंदो वेंदो।
1: दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली पाकिस्तानी प्रोडक्ट फाइजर ब्यूटी क्रीम।
2: क्लास ब्यूटी कलोन टैल्क, जिसे लगाने के बाद।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में।
5: A product by अक्सा Cosmetics Pakistan।
6: Finally, अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
7: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
8: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
7: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
6: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
9: Super White!
10: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे नहीं, खुश्क और बीरोनो की स्किन और इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द खे रीस्टोर करे हुनजी नमी खे लॉक करे, ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरियुनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में, जल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती, हर ॾींहुं रहो ब्यूटिफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
2: सुनते रहो GFM 90.8।

आलमी कानून जी पासदारी यकीनी बनाए हथे खाली शहरन ते बिना जवाज ए चिट डियारींदड़ ताकत इस्तेमाल कई वही अड़न वाकन के रोकण लाओ पाव वरता वन वफाकी गरु वजीर मोहसिन नकवी जी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात गुजरियल ढी अपोजिशन से थियल गालियन बाबत आगाह कर जरिये मूजिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ए मोहसिन नकवी की मुलाकात तकरीबन डेढ़ कलाक जारी रही वजीर आजम अपोजिशन से गालियन बाबत मोहसिन नकवी के हिदायतू भी डिन्हीं

पीटीआई लॉन मार्च जो सर वापस वठंदी या हुकूमत अपोजिशन जा मुतालबा तस्लीम कंदी। हुकूमत अपोजिशन विच में गालन जो बियो ऐं फैसलाइतो दौर कुछ देर में शुरू थियण वारो। स्पीकर आया सादिक जी ज़ारत हेठ थींदड़ हुकूमत अपोजिशन जी गालन में बई धुरियूं हिक ॿिए खे गुज़िरियल ॾींहं पेश कयल तजवीज़नि ते जवाब ॾींदियूं। हुकूमत गुज़िरियल ॾींहं पीटीआई खे लॉन मार्च ईरान सऊदी अरब ते हमला कंदड़ जंगली हौसियुनि खां लातालगी ज़ाहिर करे छॾी। ईरानी परॾेही वज़ीर हुसैन ते हमले करण बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾेई छॾी। परॾेही मीडिया मूजिबि ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकी हुसैन जे विच ओभर में अरब मुल्कनि ते हमलनि खां लातालगी ज़ाहिर कंदे हमलनि बदिरां सियासी राब्तनि जी तजवीज़ ॾिनी आहे। रतोदेरो में हथियारबंदनि जी दुकान ते फायरिंग, पंज ॼणा क़तल मारिजी वियलनि में पीउ ऐं संदसि ॿ पुट शामिल आहिनि। फोतियुनि में रजब घांगरो, संदसि ॿ पुट रियाज़ ऐं क़ुर्बान घांगरो शामिल आहिनि। बिलावल घांगरो ऐं वाटेड़ो अब्दुला बिरोही बि गोलियुनि जो खाध बणिजी विया। पुलिस जो चवण आहे त घांगरा बिरादरी जो मुख़्तलिफ़ बिरादरीनि सां तकरार हलंदड़ आहे। घांगरा बिरादरी जे मारिजी वियल चइनि ॼणनि जो तालुक रतोदेरो भरिसां ॻोठ वधापुर सां आहे ऐं मक़तूल पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि। वधीक जांच जारी आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं केपीके में बलोचिस्तान में कार्रवाइयूं, 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि ॾखण वज़ीरिस्तान में ख़ारजी दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो, जंहिं दौरान 5 दहशतगर्द मारिजी विया। बलोचिस्तान जे माशकिल में पुलिस चौकी ते हमले बाद फरार थींदड़ 6 दहशतगर्द मारिजी विया। डिस्ट्रिक्ट बार पारां सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ रैली। वकीलनि सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं रद्द करण जो मुतालबो करे छॾियो। अॻवाणनि चयो आहे त सिंध जी वहदत ते कंहिं बि क़िस्म जो समझौतो न कयो वेंदो। सिंध खे इंतिज़ामी बुनियादनि ते विरहाइण वारनि मनसूबनि खे रद्द कयूं था। गंभट में 3 ॾींहं अॻु आरिजा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़े दौरान क़तल थियल नौजवान जे वारसनि जो एहतजाज। मक़बूल अजीब आरिजो जे अमड़ ॿियनि औरतुनि सां गॾिजी पाक किताब खणी एहतजाज कयो। औरत चयो आहे त मुंहिंजे पुट खे नौकरी ॾियारण जे बहाने कातिलनि 5 लख वरिता ऐं पैसा वापसि घुरण ते नौजवान खे क़तल कयो वियो। जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि। पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाध ख़िलाफ़ अवाम सरापा एहतजाज। बणियल रांदड़ में चिंची रक्षा ड्राइवरनि हलाईंदड़ रैली कढी ऐं धरणो हयो आहे। उडेरो लाल विलेज में पेट्रोल जे वधंदड़ अघनि ख़िलाफ़ चिंची ड्राइवरनि पारां एहतजाज कयो वियो आहे। मुज़ाहिरीन चयो त पेट्रोलियम शयुनि अघनि में लाॻीतो वाध सबबि असांजे रोज़गार सख़्त मुतासिर थी रहिया आहिनि। तेल सस्तो कयो वञे। कंबर में वधंदड़ बदमनी ऐं पुलिस जे नाहेली ख़िलाफ़ 2 ॾींहं बि एहतजाज जारी। ज़िलो सिंगारियो जिदोजहद कमेटी ऐं शहरनि तरफ़ां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। अॻवाणनि चयो आहे त कंबर पुलिस जी नाहेली सबबि समूरो ज़िलो बदमनी जे वर चढ़ी वियो आहे। रोज़ धाड़ा फुरूं ऐं चोरियूं मामूल बणियल आहिनि। आई जी सिंध अमुन बहाल कराए। फिरोज़ में जेल पुलिस ऐं सेप्को अमलदारनि विच में लोड शेडिंग तां तकरार। सेप्को जा लाइनमैन जेल मुंतकिल। मिठाणी रोड ते डी फिटिंग वटि जेल पुलिस पहुची सेप्को जे लाइनमैननि खे खणी जेल मुंतकिल करे छॾियो। जेल सुप्रिटेंडेंट अबू बकर मंगी जो चवणु आहे त जेल में अतरादू लोड शेडिंग कई पई वञे। बार बार रोकणु

जिसे कुझा मुलाजिम गेट स्टेशन तां लोड शेडिंग करण बदरां जेल जी डी फिटिंग लाहे वञन था। सेपको मुलाजिमन जो जेल इंतजामिया ते हिसाइण जो इल्ज़ाम। मेहड़ में साफ पानी की फरहमी न थियण, गंदगी के आज़ार खिलाफ एहतजाज। जी डी ए पी टी आई कौमी अवामी तहरीक ए बेन पार्टी पारा वीह डी में दुआ चौक का घंटा घर चौक तीन रैली कढ़ी वही है। अगवाण मेहड़ में साफ पानी की फरहमी ना, गंदगी के आज़ार आन, रोड रस्ता उखड़ियल, अवाम के बुनियादी सहूलतू फराम क्यों वन।

0: स्पेन में बरसातनि बाद शहरी बोर वारी सूरतहाल केतिरा ई इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया। गाॾियूं बि लुड़ी वयूं, शहरनि घरनि ताईं महदूद थी विया। फ्रांस में
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर वाइट।
7: अजरक के रंगों से रंगी,
8: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
7: सिंध के दिल से निकली आवाज
8: GFM 88 नेटवर्क, सिंध

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

टीमन विच में गालियन जो बियो दौर जारी हुकूमत पीपल्स पार्टी है अपोजिशन जो वफद अलियन में शरीक पीटीआई जो बानी से मुलाकात वो मुतालबो बरकरार बैरिस्टर गोहर है गाल नतीजा डींदड़ होंद सलमान अक्रम राजा चयो तो मुतालबा तस्लीम न थे तो कौम से गड बीठल हूँ वफाकी वजीर अमीर हुकाम सुठी नीयत से गाल रहा हूं पीपल्स पार्टी के शहरी रहमान तो सोशल मीडिया के बयान से रद्द अमल न डींदी पार्टी पोजिशन बाबत गाल अजोकी गडजाणी में मस्बत नतीजे लाइ पुरुमीद आयो।

साइंसी तहक़ीक़ ऐं तरक़ी खे बहितर तिबी नतीजनि में तब्दील करणो पवंदो। सिंध हुकूमत मयारी तिबी सहूलियतूं फराहम करण लाइ पुरज़म आहे। कराची जे नाह अस्पताल में तकरीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर मुआद अली शाह चयो आहे त जदीद तिबी टेक्नोलॉजी ताईं रसाई खे वधाइणो पवंदो। सिंध हुकूमत सिहत वारे शोबे में सहूलियतूं ॾींदी।

थतो देरो में हथियार बंदन की दुकान से फायरिंग पंज जणा कतल मारजी वन में पी ए संदस ब पुट शामिल पोतियन में रजब गांगरो संदस ब पुट रियाज ए कुर्बान गांगरो शामिल बिलावल गांगरो ए वाटड़ो अब्दुल्ला फिरोई भी गोलियन जो बुख बणिया पुलिस चवण है त घांगरा बिरादरी जो मुख्तलिफ बिरादरियन सां तकरार हलंदड़ है घांगरा बिरादरी जे बार जे वेल चइन जणन जो तालुक रतो देरो भरसां गोठ वड़ापुर सां है ऐं मक्तूल पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि वधीक जांच जारी आहे।

संजय वकीलनि सूबे जे इम्कानी विरागे खे रद्द करे छॾियो. सिंध जी वहदत ते इम्कानी वार ख़िलाफ़ मुतहिद थी जिदोजहद करण जो ऐलान. हैदराबाद में नो मोर डिवीजन ऑफ सिंध जे उनवान सां आल सिंध लॉयर्स कन्वेंशन मुख़्तलिफ़ बार एसोसिएशन सां वास्तो रखंदड़ वकीलनि जी वॾे अंग में शिरकत. वकील अॻवाणनि चयो त सिंध जी वहदत ते सभु वकील मुतहिद आहिनि, विरागो कंहिं बि सूरत में क़बूल न हूंदो. वकीलनि जे गॾियल हक़नि ऐं कानून जी हुकमरानी जे तहफ़ुज़ लाइ वकील बिरादरी मुतहिद आहे.

गंबड़ भरसा नारे जा बिरादरी जी बिंदुरियन में छेड़ो बस अगा फायर कतल माओ समेत टे जणा जख्मी फोर्ट हाजी उस्मान नारे जो में जमीनी तकरार ता धुरियन में छेड़ो थियो महकुमुद्दीन नारे जो ए संदस भाव राशिद नारे जो मारजी वियो पुलिस मौजिब बई मकतूल सगा फायर आहिन संदन माओ समेत जख्मी थियल टिन जणा जो इलाज जारी आहे।

संडो जाम में सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड मुलाज़िमन की पेंशन न मिलने खां भुख हड़ताल जारी। रिटायर्ड मुलाज़िमन की मरण घड़ी ताईं भुख हड़ताल 24 कलाकन खां जारी। बिन जणन की हालत खराब, पेंशन न मिलण मुबैना माली बेज़ाबतीअ की जांच करे पेंशन ॾियण जो मुतालबो।

जेकबाद में बाईपास से वजन लाए लगल कांटे के अमले पारा ड्राइवर से मुबैना तशद एक ड्राइवर जख्मी ट्रांसपोर्टर कौमी शाहरा से ट्रकू बिहारे धरणो हो ड्राइवरन जो चवण है अमले के तशद्दुद सबब ड्राइवर हजार खान जख्मी थो है पत्तो वरतो वने तो अमले खिलाफ कार्रवाई कई वने।

में भट्टी सूमरा ऐं रिंद धुरियन में खूनी तकरार जे निपेरे लाइ नेक मर्दनि पारां मेड़मिंत काफ़िलो टिनी धुरियन मेड़मिंत काफ़िले खे मान ॾींदे ठाह लाइ रास्को ज़ाहिर करे छॾियो। धुरियन में ज़मीनी तकरार तां सूमरा धुर जा ॿ ॼणा बशीर फैस मोहम्मद सूमरो ऐं भट्टी धुर जो एजाज़ रिंद क़तल थी चुका। नेक मर्दनि जो चवणु आहे त जल्द फ़ैसिलो रखरायो वेंदो।

स्पेन में बरसातन बाद शहरी बोर्ड वारी सूरत हाल केतरा इलाका पानी हेठ गाड़ियों भी लुड़ी वयूं शहरियन घरन ताई महदूद थी व्या फ्रांस में शागिर्दन जो एहतजाज घट न थियो 1000 स्कूल बंद मुजाहिरीन केतरन इमारतन ऐं गाडियन के पायूं ॾेई छॾियूं पुलिस में हज़ारन खां वधीक शागिर्दन के गिरफ़्तार करे वरितो चकरियन में 305 पुलिस ऑफिसर ज़ख़्मी थिया अमलदारनि मूजिबि सूरतहाल ते जल्द ज़ाब्तो आंदो वेंदो

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
3: ये yeah!

घर में लेटा होगा बैठा होगा या फिर अपनी छत पे कहीं बैठा होगा या कमरे में आराम कर रहे होंगे और मुझे खामोशी से लाइट ऑन ऑफ करके सुन रहे होंगे ऑन कह लेते गलती से। अच्छा जी जनाब, तो वैसे भी मौसम थोड़ा थोड़ा तब्दील हो चुका है, ठंडा ठंडा सा मौसम भी आ चुका है और आज का मेरा अच्छा सा

सस्ते नहीं होते. अब इससे आपके माइंड में क्या बात आती है, आप लोग मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा. तब तक हम थोड़ी अक्टूबर को वेलकम कर लेते हैं, अक्टूबर की भी बात कर लेते हैं. अक्टूबर की पहली शाम हमारे शो की है, तो हम इसे अक्टूबर के नाम कर देते हैं. चलिए ये शाम

मीठी सी शाम आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे जरूर बताएं, मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आती सर्दियां और जाती गर्मियों का मौसम है। गर्मी को करें बाय बाय, सर्दी को करें वेलकम। तो जिस तरीके से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बहुत सी बातें आप लोगों से करेंगे, क्योंकि हम बातें नहीं करेंगे तो प्रोग्राम कैसे गुजरेगा, और बात हमारी बातें तो रौनक है प्रोग्राम की, ठीक है ना। तो आप लोगों की बातें शामिल होंगी तो प्रोग्राम भी हमारा आगे बढ़ेगा।

आपके घर में भी क्या यही सिलसिला चल रहा है जो आजकल अब हर घर में पाकिस्तान में चल रहा होगा? सर, हमारे सिटी का मौसम काफी चेंज हो चुका है, अच्छा हो चुका है, तो इसी के साथ एक अच्छा सा सॉन्ग भी प्ले करते हैं, फिर बातें जाते आप लोगों के साथ करते रहेंगे। तो जी, फर्स्ट जो सॉन्ग है वो मैं प्ले करने जा रही हूँ, जिन्हें जमशेद की खूबसूरत की आवाज में मैंने प्ले किया है, ना तू आएगी। तो जी, शायद ये सर्दी को बुला, लेकिन सर्दी तो आ चुकी है। चलें जी, हम भी इनके साथ इंजॉय करते हैं। हम लोग सर्दी को पूरी गर्मी याद कर रहे थे ना, वो आ गई है। चलें जी, इंजॉय करें। आवाज़ के रिश्ता में मैंने पहली जो है सॉन्ग, पहला आवाज़, पहली जो सॉन्ग है वो मैंने आवाज़ शामिल कर दी है, जिन्हें जमशेद की खूबसूरत सी आवाज़। ना तो आएगी ना ही चैन आएगा। अच्छा भाई, आ जाओ सर्दियाँ।

दे कह रहे थे, लेकिन हम तो बस पूरी गर्मियाँ एक लफ्ज़ दे देते। खैर, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, चेंज हो चुका है, तो इसमें अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत के बदलते हुए मौसम और बदलते हुए लोग बहुत तकलीफ देते हैं।

के टाइम होने वाला है ब्रेक का, प्रोग्राम आवाज के रिश्ते में, और फिर ब्रेक के बाद में आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूंगी आवाज का रिश्ता प्रोग्राम को।

0: It's 5:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए, आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम. अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां. हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज़. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.

लिसनर्स, आप लोग इंजॉय कर रहे थे आवाज के रिश्ते में फैज़ा अली की आवाज में आवाज को. एक अच्छी सिंधी सिंगर है हमारे, इनके जबरदस्त मुझे इनकी ड्रेसिंग, इनका गायकी का अंदाज बड़ा अच्छा लगता है. जो है वो है भाई, जो अच्छा लगता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, ठीक है ना. और जो चीज़ बुरी लग रही है, आपको लगता है कि सामने वाले की शादी लजारी की, तो थोड़ा सा एहतियात है, लेकिन अगर वो कुछ ज़्यादा ओवर हैं और वो ज़्यादा ही दूसरों को मतलब खुद से कमतर समझ रहे हैं, तो फिर उनकी तारीफ नहीं करनी चाहिए, बल्कि कह देना चाहिए उन्हें भी.

के साथ ही हमारे को लिसनर्स हैं और ये कह रहे हैं कि अच्छा इन्होंने लड़का ना से हमें ज्वाइन किया है, ये कहते हैं गुड इवनिंग, हाय हाउ आर यू, तो जी शो इज वेरी नाइस, जैन जी बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ अली के ज्वाइन किया है। अच्छा जी, तो एक बात मैं आप लोगों से कहूंगी

ऑफ जो है जब भी कोई मतलब मैसेजेस करें चाहे 888 पर खास करके जब भी आप लोग करें ना तो आप लोग जो है ना प्रोग्राम का नाम या होस्ट का नाम लाजमी लिखा करें ताकि फिर वो हमें शामिल करने में भी आसानी रहती है। ओके जी, इसके साथ ही प्रोग्राम में टाइम हो चुका है 5:58, यानी बस अब एक घंटा गुजर गया और पता भी नहीं चला कैसे टाइम गुजर जाता है। जी बिल्कुल, मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ रास्ते नहीं होते, तो इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं और आप लोग कैसे जो है इस शाम को सेलिब्रेट करें, क्योंकि आज तो छुट्टी का दिन है, आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी होगी, यानी कि मज़े ही मज़े हैं और ख़ासकर स्कूल भी ऑफ होते हैं। ये देखें सैटरडे संडे स्कूल भी बंद, कभी कभी जो बचपन ने दुआएं हमारी मांगी हुई थी वो आज कबूल हो रही, कभी कभी होता था बचपन में कि आज स्कूल की छुट्टी हो जाए, आज नहीं जाए तो दुआएं उस कबूल हो रही हैं। अच्छा कौन कौन ये दुआएं मांगता था, तो ये हम इसे बात करेंगे किसी दिन, इस टॉपिक को भी बात करते हैं, अच्छा सा टॉपिक इसी भी देखिए यादें वापस आ देंगे आपके, स्कूल का टाइम आपको याद आने लगेगा।

तो जी बिल्कुल, अब टाइम तो बहुत शॉर्ट नहीं है, अभी टाइम है हमारे पास भाई। पर मैं ये कहने वाली थी कि अभी टाइम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है 6 PM हो जाएंगे और मुझे एक लेना होगा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, लेकिन सबसे न्यूज ब्रेक भी होता है जो मैं लास्ट में लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी खबर से बाखबर रखना है हमें, आपको पता चले कि और क्या क्या चल रहा है।

0: अच्छा बिल्कुल इस वक्त टाइम हो चुका है 6 PM और हमें लेना है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक भी, लेकिन इससे पहले लेंगे एक न्यूज ब्रेक, उसके बाद आप इसे कंटिन्यू करते हैं आवाज का रिश्ता.
1: It's 6 PM. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow, har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खिबसे की बनी है आवाज.
3: GAFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज.
5: 44 सालों जो तजुर्बो, हजारे मरीजन जो एतमाद, आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद. 44 सालों जी वसी तजुर्बे सा हर किस्म जा आसाबी अमराज, जोड़न जो सूर मैदे.
1: It's 6 PM. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow, har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
6: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
7: Brought to you by
8: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream.
9: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.

वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जी इफ्तिताही तकरीब के खिताब कंदे पीपी चेयरमैन चयो ता आईन में गवर्नर राज आई इमरजेंसी जो ऑप्शन मौजूद है मामले जो सियासी हल कढ़ण सभी जी मफाद में आए पीटीआई के भी हुकूमत से मायदो करण घुर्जे गर्जी दहशतगर्दी जो मुकाबलो करणो पवंदो।

0: पीटीआई जो लॉन्ग मार्च खत्म थींदो या न फैसलो अॼु थी वेंदो। हुकूमत ऐं अपोज़िशन ॻाल्हियुनि में मसबत अगबराई लाइ पुरोमिन। हुकूमती ऐं अपोज़िशन टीमनि विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर जारी। हुकूमत, पीपल्स पार्टी ऐं अपोज़िशन जो वफ़द ॻाल्हियुनि में शरीक। पीटीआई जो बानी सां मुलाक़ात वारो मुतालबो अॼु बि बरक़रार। बैरिस्टर गोहर चयो त ॻाल्हियूं नतीजा ॾींदड़ हूंदियूं। सलमान अकरम राजा चयो त मुतालबा तस्लीम न थिया त क़ौम सां गॾु बीठल हूंदासीं। वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मुक़ाम चयो त सुठी नियत सां ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं। पीपल्स पार्टीअ जी शेरी रहमान चयो त सोशल मीडिया जे बयाननि ते रदअमल न ॾींदासीं। पार्टी पोज़ीशन बाबति ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं। अॼोकी गॾिजाणीअ में मुस्बत नतीजे लाइ पुरउमेद आहियूं। भारतीय बॉर्डर फोर्स जी फायरिंग में ॿिनि पाकिस्ताननि जी शहादत ते पाकिस्तान जो सख़्त एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर परॾेही ऑफिस तलब। एहतजाजी ख़त बि ॾिनो वियो। हथे ख़ाली शहरनि खे दरअंदाज करणु ॾियण वारे भारतीय कोशिश रद्द। वाकियो बुनियादी इंसानी हक़नि ऐं हक़ ज़िंदगीअ जी संगीन भञकड़ी करार। भारत खां ज़िमेवार बॉर्डर फोर्स जे अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। परॾेही खाते मूजिबि भारतीय बॉर्डर फोर्स हथे ख़ाली बेगुनाह पाकिस्तानी शहरनि खे शहीद कयो। भारत बुनियादी इंसानी हक़नि ऐं आलमी कानून जी पासदारी यकीनी बणाए। हथे ख़ाली शहरनि ते बिना जवाज ऐं चिड़ ॾियारींदड़ ताक़त इस्तेमाल कई वई। अहिड़नि वाक्यनि खे रोकण लाइ उपाउ वरिता वञनि। साइंसी तहक़ीक़ ऐं तरक़ीअ खे बहितर तिबी नतीजनि में तब्दील करणो पवंदो। सिंध हुकूमत मयारी तिबी सहूलियतूं फराहम करण लाइ पुरअज़म आहे। कराची जी जना अस्पताल में तक़रीब खे ख़िताब कंदे सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त जदीद तिबी टेक्नोलॉजीअ ताईं रसाईअ खे वधाइणो पवंदो। सिंध हुकूमत सिहत वारे शोबे में सहूलियतूं ॾींदी।
1: दुश्मनी असांजी होॾे आहे।

रतो देरो में हथियारबंदनि जी दुकान ते फायरिंग, पंज ॼणा क़तल। मारिजी वियलनि में पीउ ऐं संदसि ॿ पुट शामिल। फौतियुनि में रजब गांगरो, संदसि ॿ पुट रियाज़ ऐं क़ुर्बान गांगरो शामिल। बिलावल गांगरो ऐं वाटहड़ू अब्दुल्ला बिरोही बि गोलियुनि जो खाज बणिजी विया। पुलिस जो चवणु आहे त गांगरा बिरादरी जो मुख़्तलिफ़ बिरादरनि सां तकरार हलंदड़ आहे। गांगरा बिरादरी जी मारिजी वियल चइनि ॼणनि जो तालुक़ु रतो देरो भर सां ॿुधायो पियो वञे ऐं मक़तूर पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि। वधीक जाच जारी आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं केपी ऐं बलोचिस्तान में कार्रवायूं। 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियुनि मूजिबि ॾखिण वज़ीरिस्तान में ख़ारजी दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो, जंहिं दौरान 5 दहशतगर्द मारिजी विया। बलोचिस्तान जे माशकेल में पुलिस चौकीअ ते हमले बाद फ़रार थींदड़ 6 दहशतगर्दनि खे बि मारियो वियो। सिंध हुकूमत कराची जी शहरनि खे बहितर बुनियादी सहूलियतूं फराहम करण लाइ अमली कदम खणी रही आहे। ग्रेटर कराची सीवरेज प्लान S3 तहत ट्रीटमेंट प्लांट 1 जो फॉल थियण सीवरेज निज़ाम में अहम अगभराई आहे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील महमूद चयो त TP1 जी सलाहियत खे 51 मिलियन गैलन रोज़ानो मां वधाए 100 मिलियन गैलन रोज़ानो करण जो मनसूबो आहे। प्लांट खे फौरी फॉल करण लाइ सिंध हुकूमत पारां सानवी सतह जी ट्रीटमेंट लाइ 5 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। सिंध जे वकीलनि सूबे जे इम्कानी विरहाङे खे रद्द करे छॾियो। सिंध जी वहदत ते इम्कानी वार ख़िलाफ़ मुतहद थी जदोजहद करण जो ऐलान। हैदराबाद में नो मोर डिवीज़न ऑफ सिंध जे उनवान सां आल सिंध लॉयर्स कन्वेंशन। मुख़्तलिफ़ बार एसोसिएशन सां वास्तो रखंदड़ वकीलनि जी वॾी अंग में शिरकत। वकील अॻवाणनि चयो त सिंध जे वहदत ते सभु वकील मुतहद आहिनि। विरहाङो कंहिं बि सूरत में क़बूल न हूंदो। वकीलनि जी गॾियल हक़नि ऐं कानून जी हुकमरानी जे तहफ़ुज़ लाइ वकील बिरादरी मुतहद आहे।

स्पेन में बरसातुनि बाद शहरी बोड वारी सूरतहाल केतिरा इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया गाॾियूं बि लुड़ी वयूं शहरी घरनि ताईं महदूद थी विया फ्रांस में शागिर्दनि जो احتجاج घट न थियो 1000 स्कूल बंद मुज़ाहिरीन केतिरनि इमारतुनि ऐं गाॾियुनि खे बाहि ॾेई साड़े छॾियो पुलिस 2000 खां वधीक शागिर्दनि खे गिरफ़्तार बि करे वरितो चकरनि में 305 पुलिस ऑफिसर ज़ख़्मी अमलदारनि मूजिबि सूरत हाल ते जल्द ज़ाब्तो आंदो वेंदो

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
1: brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
2: अच्छा, variants सबके different, लेकिन choice सबकी है। Super.

एक न्यूज और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का फर्जी प्रोग्राम आवाज के रिश्ते में आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ जी। बिल्कुल, जहाँ आवाज वहाँ रिश्ता, एक ऐसी ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर आप लोगों के साथ साथ और आपकी बातों को सुना जाएगा, आपकी बातें होंगी और कुछ यादें, खूबसूरत सी यादें होंगी, खूबसूरत आवाज़ों के साथ, मुख्तलिफ खूबसूरत आवाज़ों के साथ एक रिश्ता बन जाता है। तो इसी के साथ ही हम वापस भी आ चुके हैं और प्रोग्राम में मैंने एक बात की थी आप लोगों से कि कुछ रास्ते रास्ते नहीं होते, हमने इस टॉपिक पर बात की थी। तो आप लोगों की नज़र में क्या है, क्योंकि मैंने एक पूरी नज़म पढ़ी है और हमने उसमें ये बात शो की कि वाकई कुछ रास्ते, कुछ जगहें, कुछ गलियाँ वो सिर्फ नहीं होते रास्ते में, तो वो यादें होती हैं हमारी, बहुत सी व्यवस्था हमारी उनकी यादें होती हैं। और बहुत ही ऐसा वक्त होता है जो कहते हैं काश के फिर से लौटा है, खासकर आज के दौर में जो है, जिसको देखो ये कहते हैं काश बचपन का दौर आ जाए। देखिए बचपन बेफिक्री का दौर था, वो अलग दौर था, ये अलग दौर है। अच्छा जी, तो प्रोग्राम में आगे बढ़ने, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में मैं भी शामिल करना चाहती हूँ दीपिका की खूबसूरत सी आवाज़ को जी। बिल्कुल, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, एक सूफी कलाम है दीपिका कियानी का, वो मैं प्रोग्राम में शामिल कर चुकी हूँ, क्योंकि दीपिका कियानी की क्या बात है, उनके जो सॉन्ग हैं, उनके भाव, उनके चाहने वाले आज भी सुनना पसंद करते हैं। हालांकि ये हमारे तो टाइम की नहीं है, लेकिन हमें भी उनके पसंद है, मैं भी इनके सॉन्ग बहुत शौक से सुनती हूँ, इनकी आवाज़, इनकी गायकी का अंदाज बहुत अच्छा है, और कोई ना कोई सॉन्ग इनका मैं अपने प्रोग्राम में शामिल जरूर करती हूँ। तो जी आज ही मैंने शामिल कर दिया आवाज़ के रिश्ते में

से ही हमें सुनते हैं और ये कहने के शो नाइस से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने पसंद किया। अच्छा जी साथ आपने फरमाइश की कि सॉन्ग सुना दीजिए, तो जी आप जो महबूब जो सिंगर इनका आप सॉन्ग कह रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे साथ उनका जो सॉन्ग है ना वो लिख के मुझे सेंड कर दिया करें आपने कौन सा सुनना है।

0: It's 6:30 PM. This time check.
1: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हांजी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जे में आहिन चावरन जो खूबियो ए कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के ब्लॉक करे ए चावरन जो खूबियो जिल्द मा फाइन लाइंस ए झुरन के घट कन ए रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ए ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जे जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स

दरिया ऐसे लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर. अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics.

आजकल इस्लामाबाद में काफी कुछ हो रहा है और सूबे के साथ जुड़े हुए हैं, और खास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा है, दहशत गर्दी का मुकाबला बलोचिस्तान में और पख्तूनख्वा में हो रहा है। अगर किसी वजह से वो इन दहशत गर्दों पर काबू नहीं हो सकते, उसके बाद उस दहशत गर्दी का असरात हमारा शहर कराची पे हो, तो इसलिए पाकिस्तान भी दहशत गर्दी को एक बहुत बड़ा अहम इशू समझता है। चाहते नहीं है कि हम सब मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करें। और एक तो हफ्ते से वफाकी हुकूमत सदर पाकिस्तान से और पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी से रास्ते में थे कि वो वफाकी हुकूमत ने अपना जहन बना दिया था और फौरी तैयार था कि वो चाह ये रहे थे कि फौरी तौर पर पख्तूनख्वा एमरजेंसी नाफिज किया जाए और गवर्नर रूल नाफिज किया जाए। और जबकि गवर्नर रूल और इमरजेंसी एक आईनी हथियार जरूरत पड़े उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और जहां आपका एहतजाज एक हद तक बहुत कामयाब हो चुका है, आप अभी तक 10 दिन से ज्यादा तो इस्लामाबाद में हैं।

سائنسی تحقیق ऐं तरक़ी खे बहितर तिबी नतीजनि में तब्दील करणो पवंदो। सिंध हुकूमत मयारी तिबी सहूलियतूं फराहम करण लाइ पुरअज़म आहे। कराची जे जिना अस्पताल में तकरीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर महादरी शाह चयो आहे त जदीद तिबी टेक्नोलॉजी ताईं रसाई खे वधाइणो पवंदो। सिंध

0: मच्छरत वारे शोबे में सहूलत हूंदी। हथो देरो में हथियार पंधनि जी दुकान ते फायरिंग, पंज ॼणा कतल। मारजी वेलनि में पीउ ऐं संदसि ॿ पुट शामिल। पोतियुनि में रजब घांगरो, संदसि ॿ पुट रियाज़ ऐं कुर्बान घांगरो शामिल। बिलावल घांगरो ऐं वाटड़ो अब्दुल्ला पिरोही पीउ गोलियुनि जो बुक वणिया। पुलिस जो चवण आहे त घांगरा बिरादरी जो मुख़्तलिफ़ बिरादरीनि सां तकरार हलंदड़ आहे। घांगरा बिरादरी जी मारजी वियल चइनि ॼणनि जो तालुक रतो देरो भरसां ॻोठ वधापुर सां आहे ऐं मक़तूल पाण में वेझा अज़ीज़ आहिनि। वधीक जांच जारी आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं केपी ऐं बलोचिस्तान में कार्रवाइयूं। 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि ॾखण वज़ीरिस्तान में खारजी दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो, जंहिं दौरान 5 दहशतगर्द मारिजी विया। बलोचिस्तान जे माशकेल में पुलिस चौकी ते हमले बाद फरार थींदड़ 6 दहशतगर्द मारिजी विया। सिंध जे वकीलनि सूबे जे इम्कानी विरागे खे रद्द करे छॾियो। सिंध जी वहदत ते इम्कानी वार ख़िलाफ़ मुतहद थी जदोजहद करण जो ऐलान। हैदराबाद में नो मोर डिवीजन ऑफ सिंध जे उनवान सां आल सिंध लॉयर्स कन्वेंशन, मुख़्तलिफ़ वार एसोसिएशन सां वास्तो रखंदड़ वकीलनि जे वॾे अंग में शिरकत। वकील अॻवाणनि चयो त सिंध जी वहदत ते सभु वकील मुतहद आहिनि। विरागो कंहिं बि सूरत में क़बूल न हूंदो। वकीलनि जे गॾियल हक़नि ऐं कानून जी हुकमरानी जे तहफ़ुज़ लाइ वकील बिरादरी मुतहद आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
5: अच्छा, variants सबके different, लेकिन choice सबकी है।

0: चाहे फिल्म फिल्म्स, टूटी फूटी इंग्लिश एक करे कमेंट, बातें तेरी दिल पे ना देती मेरे डेंट, न करूँ तुझे ब्लॉक न करूँ तुझे बैन, तू ना मेरा हेटर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream.
5: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: आप सुन रहे थे
6: इमरजेंसी एक आईनी हथियार है, जरूरत पड़े उसको इस्तेमाल किया जा सकता है और जहां आपका एहतजाज एक हद तक बहुत कामयाब हो चुका है। आप अभी पत्नी 10 दिन से ज्यादा तो इस्लामाबाद में है या नहीं, इस्लामाबाद तो बंद पड़ा हुआ है और ये इल्जाम इन पे आ सकता है या साबित हो सकता है कि वो वफाक के साथ नहीं दे रहे, तो फिर हमें मजबूरन जो है इमरजेंसी या गवर्नर की तरफ शायद जाना पड़े। तो उससे पहले हमारा कोशिश ये है कि आप पीटीआई से रब्ता करें, आप अपना जो कामयाबी है लॉन्ग मार्च का वो मान और आप इसको इस मार्च को अब खत्म करें।
7: केपी में इमरजेंसी जो फैसलो थी वियो हो असा वफाकी हुकूमत के गाली लाए राजी क्यों केपी हुकूमत दहशतगर्दी वाले मसले के अहमियत न दिनी वफाक सा

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: खून करणीता से हमारी धरती माँ, हमारा देश सिंध, जिसको हम ना तो आपको यूनिट्स बनाने देंगे और ना हम इसके आपको सूबे बनाने देंगे।
1: सूबे जी इम्कानी विरागी के रद्द करे छो सिंधी बेहतर ते इम्कानी वार खिलाफ मुतहद थी जदोजहद करण जो ऐलान हैदराबाद में नो मोर डिवीजन ऑफ सिंध के उनवान सा ऑल सिंध लॉर्ड्स कन्वेंशन मुख्तलिफ बार एसोसिएशन सा वास्तो रखंदड़ वकीलन के वडे अंग में शिरकत वकील अगवाणन चयो त सिंधी बेहतर ते सब वकील मुतहद आहिनि विराको कंहिं बि सूरत में क़बूल न हूंदो वकीलनि जी गॾियल हक़नि ऐं कानून जी हुकमरानी जे तहफ़ुज़ लाइ वकील बिरादरी मुतहद आहे
2: सिंध में सनतुनि जी तबाहीअ जो ज़िमेवार केर नेब जांच शुरू करे छॾी सनतुनि लाइ अलाट कयल प्लाट ऐं खातनि में थींदड़ भर्तियुनि जो रिकॉर्ड तलब नेब लाॻापियल खाते खे लिखियल लेटर में चयो आहे त कहिड़े सेक्रेटरीअ जे दौर में केतिरा सनती प्लाट कमर्शियल सरगर्मियुनि लाइ इस्तेमालु करण जी इजाज़त मिली कंहिं केतिरियूं भर्तियूं कयूं समूरा तफ़सील ॾिना वञनि साइट ऐं हैदराबाद में सनती प्लाटनि जी कमर्शियल इस्तेमाल ऐं भर्तियुनि जा तफ़सील बि ॾिना वञनि के टी एन न्यूज़ जे प्रोग्राम द मिरर में छिड़काईंदड़ इंकशाफ़ साम्हूं अची विया
1: गबड़ बरसान अरे जा बिरादरी की विनपुरियन में छेड़ो ब सगा भार कतल माओ समेत तेज जणा जख्मी कोट हाजी उस्मान नारेजो में जमीनी तकरार ता धुरियन में छेड़ो थियो महकुमुद्दीन नारेजो ऐं संदस भाउ राशिद नारेजो मारजी वियो पुलिस मूजिब बई मक़तूल सगा भाइर आहिनि सदन माओ समेत जख्मी थियल टिन जणनि जो इलाज जारी
2: ملیر میں بلوچستان کے اگونے صوبائی وزیر علی حسن زہری خلاف مختلف برادرن کی ریلی پیپلز پارٹی ایم این اے جام کریم جوکھیو سے یکجہتی جو اظہار ٹھٹو سجاول میرپور ساکرو گھارو دھابے جی کاٹھوڑ گڈاب ملیر درسانو چھنو بین علاقن میں ریلیوں پریس کلب پہنتیوں بلوچستان کے اگونے صوبائی وزیر علی حسن زہری خلاف نعرے بازی اگوانوں کا چوڑ ہو تو علی حسن زہری لفظن سے معافی نہ ورتی تو احتجاج کا دائرہ ودھایا وند
1: नौशहरो फिरोज में जेल पुलिस ऐं सेप्को अमलदारनि विच में तकरार बाद सेप्को अमले ग्रिड बंदि करे छॾी नौशहरो शहर समेत केतिरनि ॻोठनि जी बिजली बंदि मुलाज़िमनि जो थाणे आॾो धरणो जेल अहलकारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करण जो मुतालबो मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जी बिजली बंदि मुज़ाहिरनि जेल पुलिस बिना जवाज़ मुलाज़िमनि खे हिरासा में वरितो
2: सिंध ज़री यूनिवर्सिटी टंडो जाम जे रिटायर मुलाज़िमनि जी पेंशन न मिलण ख़िलाफ़ भुख हड़ताल जारी रिटायर मुलाज़िमनि जे मरण घड़ीअ ताईं भुख हड़ताल 24 कलाकनि खां हलंदड़ ॿिनि ॼणनि जी हालति ख़राब पेंशन न मिलण मुबिना माली बेज़ाबतगियुनि जी जांच करे पेंशन ॾियण जो मुतालबो
1: जेके बाद में बाईपास ते वज़न लाइ लॻल कांटे जे अमले पारां ड्राइवरनि ते मुइना तशद हिकु ड्राइवर ज़ख़्मी ट्रांसपोर्टरनि क़ौमी शाहरा ते ट्रकूं बीहारे धरणो हयो ड्राइवरनि जो चवणु आहे त अमले जे तशद सबबि ड्राइवर हज़ार खान ज़ख़्मी थियो आहे पतो वरितो वञे थो अमले ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे
2: कुंभ में भट्टी सूमरा ऐं रिंद धुरियुनि में खूनी तकरार जे निबेरे लाइ नेक मर्दनि पारां मेड़मिंट काफ़िलो टिनी धुरियुनि मेड़मिंट काफ़िले खे मान ॾींदे ठाह लाइ राज़पो ज़ाहिर करे छॾियो धुरियुनि में ज़मीनी तकरार तां सूमरा धुर जा ॿ ॼणा बशीर फैज़ मोहम्मद ऐं भट्टी धुर जो एजाज़ रिंद क़तल थी चुका नेक मर्दनि जो चवणु आहे त जल्द फ़ैसिलो रखायो वेंदो
1: गड़ी हसन में काठ जी पुल तां क्रॉस करण दौरान नींगर वाह में किरी ॿुॾी फोत घोट शकर खान बिरोही में पंज वरियन जो नींगर ज़िक्रिया बिरोही पुल क्रॉस करण दौरान वाह में किरी ॿुॾी फोत थियो ॿुधाइण जो चवणु आहे त हुकूमत वा ते पुल नए ठहराई जै सबब गोठाणा मौत के मुंह में गुजरन था नई पुल तामीर कराई दिनी वे।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
5: अजरक के रंगों से रंगी,
6: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
6: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क
2: GFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपरवाइज राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोजेक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।

पहिरीं बानीअ सां मुलाकात थींदी, पोइ लॉन्ग मार्च ख़तम थींदो। पीटीआई हुकूमत खे आगाह करे छॾियो। हुकूमत अपोज़िशन में मुआदे ते इतफ़ाक़ बाद राजा नासिर अब्बास ऐं महमूद ख़ान अचकज़ई विच में राब्तो। महमूद ख़ान अचकज़ई लॉन्ग मार्च जे ख़ात्मे लाइ बानीअ सां मुलाक़ात जो शर्त रखी छॾियो। अपोज़िशन टीम महमूद अचकज़ई जी नयुनि हिदायतुनि बाद हुकूमती वफ़द खे आगाह कयो। ज़रियुनि जो चवणु आहे त अपोज़िशन जी नयुनि शर्तुनि बाद हुकूमत अपोज़िशन विच में ॻाल्हियुनि दौरान डेढ लाख पैदा थी वियो आहे।

0: हज कर इस्लामाबाद में काफी कुछ हो रहा है और सूबे के साथ जुड़े हुए हैं और खास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा है, दहशत गर्दी का मुकाबला बलोचिस्तान में और पख्तूनख्वा में हो रहा है। अगर किसी वजह से वो इन दहशत गर्दों पर काबू नहीं हो सकते, उसके बाद उस दहशत गर्दी का असरार हमारा शहर कराची पे हो, तो इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट दहशत गर्दी को एक बहुत बड़ा अहम इशू समझता चाहते हुए है कि हम सब मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करें। और एक तो हफ्ते से वफाकी हुकूमत सदर पाकिस्तान से और पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी से रास्ते में थे कि वो वफाकी हुकूमत ने अपना ज़हन बना दिया था और फौरी तैयार था कि वो चाह ये रहे थे कि फौरी तौर पर पख्तूनख्वा एमरजेंसी नाफिज किया जाए और गवर्नर रूल नाफिज किया जाए। और जबकि गवर्नर रूल और इमरजेंसी एक आईनी हथियार है, जरूरत पड़े उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और जहां आपका एहतजाज एक हद तक बहुत कामयाब हो चुका है, आप अभी पिछले 10 दिन से ज्यादा तो इस्लामाबाद में है या नहीं, इस्लामाबाद तो बंद पड़ा हुआ है और ये इल्जाम इन पे आ सकता है, ये साबित हो सकता है कि वो वफाक के साथ नहीं दे रहे, तो फिर हमें मजबूरन जो है इमरजेंसी या गवर्नर की तरफ शहर जाना पड़े। तो उससे पहले हमारा कोशिश ये है कि हम पीटीआई से रब्ता करें, आप अपना जो कामयाबी है लॉन्ग मार्च का वो माने और आप इसको इस मार्च को अब खत्म करें।
1: खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी जो फैसलो थी वो हो असा वफाकी हुकूमत के गाल राजी कर के पी हुकूमत दहशतगर्दी वाले मसले के अहमियत न डनी वफाक से सहकार न कर तो मजबूरन इमरजेंसी या गवर्नर राज तरफ वनो पवे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है इस्लामाबाद में घड़ो कुछ थी रो है, 10 डीन का शहर बंद है, के पी में दहशतगर्दी वी रही है, सूबई हुकूमत जो समूरो ध्यान एहतजाज से है, के पी